पार न बलिहार न लख बरिया, नामो हो नाम साहिब को प्राण अदरिया रहाओ। कर्ण करावन तुही एक, जी जंत की तुही टेक,

क्या किश करै के करण हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा पूरन खसम हमारे करो कृपा सर्ब के दाते एक रूप लिव लावो नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो कोट जना कर सेव लगाया जियो भगत वछल तेरा बिरद रखाया जियो पूर्ण सबनी जाई जियो क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो संता दासी सेवा चरणी जियो एहो जियो बताई बल बल जाई जियो तिस निम निम लागो पाई जियो पोथी पंडित बेद खो जनता जियो होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो गीत नाद कीर्तन गावंता जियो हर निरपौ नाम ते आई जियो पए कृपाल स्वामी मेरे जियो पतत पवित लग गुर के पैरे जियो भ्रमपो काड़ किए निर्वैरे जियो गुरमन की आस पुराई जियो जिन नाव पाया सो तनवंता जियो जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो जिस साधु संगत ते सब सुकरणी जियो जन नानक सहि समाई जियो गौड़ी महला पंजवा माज आओ हमारे राम प्यारे जियो रहन दिन सो साथ साथ चितारे जियो संत देव संदेसा पै चरणारे जियो तुद बिन कित बिन तरिये जियो संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो वन त्रिण त्रिपावन सुख परमानंदा जियो से सुहावी ओ मन बिकसंदा जियो पेख दर्शन ओ सुख लइए जियो चरण पखार करी ने सेवा जियो पूजा अर्चा बंदन देवा जियो दासन दास नाम जप लेवा जियो बिनो ठाकर पै कही है जियो इच्छ पुन्नी मेरी मंतन हरिया जियो दर्शन पेख तो सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जप तरिया जियो एहो अजर नानक सुख सही है जियो गौड़ी माज महला पंजवा सुन सुन साजन मन

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जाना, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्याग, खोजे पद निर्वाना, जन नानक हो खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नावा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनस एक अस्थिर मन, अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथिया, रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, अहनिस मगन रह माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह विद्या बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग, देखता से उठतावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूढ़ ताहे बिसरावे, जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा, साधो एहो मन गहयो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध कठी के पीतर, जेह सुध सब बिसराई, रतन ज्ञान सबको हिरलीना, तासों कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, तौ सब बिद बने।

पतत पुनीत दीन बंद हर शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फोन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त।

वेद पुराण साध मग सुनकारो निमखना हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बानो ता सो रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभु ता सो नेहो ना लावे, नानक मुक्ता है तुम मानो जे कट नाम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिश्रामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझां कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कटे नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो धर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे कशु उपाओ मुत का कर रे, नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी, एक ओवंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निध सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिगठाक रहाया उल्ट पई जीवित मर जा गया, शब्द रवै मन हास्यों ला गया रस संग्रह बिख पर हर त्या गया। पाए बसे जमका पौ भाग्या साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म धारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम भुलाना, कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी ग्वारेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन। शब्द पछाने तिन्ने पौन, जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया। देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए। रहाओ मन भूलो बोचते विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्ध रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार। हरक सोक उबे दरबार, सुख सहजे जपरद मुरार, नजर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नाम सब दुख निवास, मनमुख मूड़ माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावे, साचे सूचे मैल न पावे, नानक हर गुण गावे। गौड़ी गुआरे री महला पहला, हौ मैं करत्या न सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावे दोए, सो कमावे तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे नाम बिसारी। रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत दुख

हर नाग छले नखो विधासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल ने बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दै संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन में जय गुर शब्द ना जान्या क्यों सुख पावे परम भुलान्या एक तिल भूले बहुर पछतान्या कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राख कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरा

सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ ताज कुलै सिर छतर बनावाओ बिन जगदीश कहां सच पावाओ खान मलूक कहावाओ राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा हों मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान सियावरे परपंच ब्याह त्याग कवरे भाई मिलाए सच सच है सच रे ऐसा राम पग जन होई हर गुण गाय मिले मल धोई रहा ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत यगन जगत पर जार है सो उबरे गुर शब्द विचार है प्रेंग पतंग कुंचर्यार मीना मिर्ग मरे सह अपना कीना तृष्णा राच तत नहीं बीना काम चित कामण हितकारी क्रोध विनाशे सगल विकारी पत मत खोवे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर कौ देई काम दाम चित पर वसेई बिन पर तृप्त ना कबहू होई पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरे ना लेखे पावे वेश करे बहु पसम लगावे नाम विसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मन दे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोएथ सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाह वाह जे वाट दिखावे, तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे, तिसको वाह वाह जे मेल मिलावे। वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए।

सुल्तान खान बादशाह नैरना, नामो पुले जमका दुख सहना, मैं तर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सह मरे संचय माया दाम, मैं तन दीजे हरि अमृत नाम। रैयत महर मुकदम सिकदार, निश्चल कोय ना दिसे संसार, अफर्यो काल कूड़ सिर मारे। निश्चल एक सच्चा सच सोई, जिन कर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी शेख पेख फकीरा, वड्डे कहावे हो मैं तन पीरा, काल ना छोड़े बिन सतगुर की तीरा।

गुण गाए नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल ना जो है, मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर लही है। हर रस माते उस कही है, गुरमत चालो निचल नहीं डोले। गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत् विरोले। सतगुर दीखिया दीख्या लीनी, मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच ज्योतिया पार, जय देखो तह एक ओंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चुकी अहम ब्राह्मणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। सासन दुखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम

हर कथा सुने से तनवंत दिसै जुग माही तिनको सब ने वह अंदन पूज कराही सहजे गुण रवै साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हमें मार ब्रह्म मिलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाण अंतर तामस आप ना पछाण ता प्रभ पाए गुर शब्द बखाण गुर सेवा करो फिर काल ना खाए मन मुख खादे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सी दे गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे मेरा प्रभ पाया।

छोड़ सेवा करना जीवित मोए रहन। जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सरकार, ओ क्यों मनो विसारी है, हर रखी है हृदय तार। नाम मिले है पत पाई है, नाम मने है सुख होए, सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए। सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टिकानो, तरत असमान ना चले विच विष्टा पए पचानो। एहो जग परम पुलाया मोठ गौली पाए, जिन्ना सतगुर पेटिया तिन नेण ना पिटे माए। सतगुर सेवन से सोहने हाँ मैं मैल गवाए, शब्द रते से निर्मले चले सतगुर पाए। हर प्रभ दाता एक तू, तू आपे बख्श मिलाए, जन नानक शरणागति ज्यो पावै तवै छड़ाए। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा कर हरे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर हले मन परदेसिया क्यों मिलिए हर माए। गुरपाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए, मन करहला सतगुर पुरख ते आए रहाओ। मन करहला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिया हर आपे ले छाए। मन करहला अत निर्मला मन लागी हो मैं आए, प्रतख पिर कर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए। मन करहला मेरे प्रीतमा हरदय पाल पाल आए, ओ पाए कितना लब्बई गुर हृदय हर देखाए। मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिव लाए, घर जाए पावे रंग महली गुर मेले हर मेलाए। मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए, पाखंड लोभी मारी है जम डंड दे सजाए। मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए, हर अमृत सर गुरपूरिया मिल संगति मल ले जाए। मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए, एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन करहला मेरे सजना हर खर्च लिया पत पाए, हर दर गै पहनाया हर आब लया गल ला।

मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाओ, मन करहला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चल तेरे नाल। मन करहला वडभागिया हर एक नजर निहाल, आप छडाए छुट्टिया सतगुर चरण संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल, गुर नानक नाम विखालिया हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन संभाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले भ्रम पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द संभाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल।

ना सहज सोहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किस को एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इस को है मुश्किल भारी जब इन करने हर पिछाता तब इसनो नाही किस्ताता जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नहीं है पार ब्रह्मा जब इन किश कर्मा ने पेदा तब ते दुख डंड अरखेदा जब इन एको एकी बुझिया तब ते इसनो सबके सूझिया जब यो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तसलाथी जब इसते ए होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी करन करावन सब किसे कै आपे बुद्ध विचार बबे कै दूर ना नेरे सब कै संगा सा सालाहनो नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुरसेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा तिसके हृदय रविया सोए मन तन सीतन निचल होए ऐसा कीर्तन कर मैं मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए तावत मनुआ आवै ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत हम मैं पागे जास जपत वसिया वै पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत एह तृष्णा बुझै जास जपत हर दरगह सजै जास जपत कोट मिटै अपराध जास जपत हर होवै साध जास जपत मन शीतल होवै जास जपत मल सगली खोवै जास जपत रतन हर मिलै भवन न छोड़ै हर संग हिलै जास जपत कई बैकुंठ वास जास जप सो सहज निवास जास जपते अग्न पोहत जास जपते काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जप सगला दुखलाता जास जपत मुश्किल कछु ना बने जास जप सुन अनहत तुने जास जपते निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर सुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा कहो नानक जे सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर धारै पंच जना स्यों संग निवारै दस इंद्री कर राखै वास ता कै आत्मै होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ता कै होए जा को दया मया प्रभ सोए रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है जेता बोलन तेता ज्ञान है

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम सं

भगत लाहा अन दिनो, तिस बाज वखर कोई ना सूजै, नाम ले वो खिन खिनो। परख लेखा नदर साची, करम पूरे पाया, नानक नाम महारस मीठा, गुरपूरै सच पाया। राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। सात अन बिनो करे जियो, हर के गुण सारे, खिन पल रहना सके जियो, बिन हर प्यारे, बिन हर प्यारे रहना सके, गुर बिन मैल ना पाईए। जो गुर कहे सोई पर की जय, तिसना यगन बुझाइए। हर साचा सोई, तिस बिन अवर ना कोई, बिन सेवे सुख ना पाए। नानक सातन मिले मिलाई, जिसनो आप मिलाए। तन रहन सोहेलड़िए जियो, हर स्यों चित लाए, सतगुर सेवे पाओ करे जियो, विचों आप गवाए। विचों आप गवाए हर गुण गाए, अंदन लागा पाओ। सुन सखी सहेली जी की मेली, गुर कै शब्द समाओ। हर गुण सारी ता कंत प्यारी, नामे तरी प्यारो, नानक कामन ना प्यारी, राम नाम गलहारो। तन एकलड़ी जियो, बिन नहा प्यारे, दूजे पाए मुठी जियो, बिन गुर शब्द करारे। बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे, माया मोहे खुआई, कूड़ विगुत्ती ता प्रमुत्ती, सातन मैल ना पाई। गुरशब्दे राती सहजे माती, अंदन रह समाए, नानक कामन सदा रंगराती, हर जो आ मिलाए। ता मिलिया हर मेले जियो, हर बिन कवन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो, कौन परम चुकाए, गुर परम चुकाए, इउं मिलिए माए, ता सा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोरे अंधार, बिन गुर मग न पाए, काम

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवे जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापड़ तन सुहावे जा पिर भावे, गुरमती चित लाइए सदा सुहागण जा सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाई है, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी, लाहा नाम संसारे नानक कामण नहा प्यारी, जा हर के गुण सारे, सात हन रंग माणे जियो, अपने नाल प्यारे अहनस रंग राती जियो, गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हम मैं मारे, इन बद मिलो प्यारे, सातन सोहागण सदा रंग राती, साचा नाम प्यारे, अपने गुरमिल रही है अमृत गही है, दुबदा मारन वारे, नानक कामण हर वर पाया, सगले दुख विसारे,

पानी अन्न ना पावै मरिए हावै, बिन पिर क्यों सुख पाई है। गुर आगे करो बिनंती जे गुर भावै, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल लए सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामण सदा सुहागण ना फिर मरै न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामण हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामण वर पाए, गुरमती रंग लाए, एह शरीर कुड़ एह शरीर कूड़क सत भरिया, गलत आई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहित उपजै, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामण प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामण पिर पाया जियो, गुर कै पाए प्यारे, रहण सुख सुती जियो, अंतरे उर तारे, अंतरे उर तारे मिलिए प्यारे, आन दिन दुख निवारे, अंतर महल प्रदावे कामण गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे, नानक सच मिली सोहागण गुर कहत्या पारे।

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो, जो जुग भगत प्यारे जो जुग भगत प्यारे, हरे आप सवारे आपे भक्ति लाए, आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण गाता गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

तिन किल बिखदा हनहार संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हरमादो ध्याय मना मुरार मुकंदे कटिए काल दुख फादो दुख हरण दीन सरण श्री तार चरण कमल आरा दी है जम पंथ विखड़ा अगन सागर निमख सिमरत साधी है काल मलै देता शुद्ध करता दिन सरहण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दा मोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वछल बिरदाया भगत वछल पुरख पूर्ण मन आचिंदया पाईऐ तम अंध कूप ते उधारै नाम मन वसाईऐ सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन धारी करना मैं समरथ स्वामी घटघट प्राण आधारी प्राण मंतन जी दाता बेअंत अगम्या पारो सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल तारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन को एक सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसै काल कंटक लो मोह नासै जी जा कै प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण कला बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मल उदम करेहा मनाए लय हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह साधु मंत सखी वस आया फिर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करै तिस जंत सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाई है कल कलेश मिटै भ्रमनासै मन चिन्हया फल पाई है पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभ मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवट भागी माए सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे मेरा मंतन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बाम नखरी महला पंजवा सलोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंद सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सात सतबुद गुरदेव सात सतबुद मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर
गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग, नानक एको रव रया दूसर होवा ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं। आपै सुनो आपै सुख आसनो, आपै सुनत आप ही जासन। आपने आप आपै उपायो, आपै बाप आप ही मायो। आपै सूखमो आपै अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। रहाओ सलोक निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण।

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तंते ऊजह रुच या मनुआ तन नहीं बांछै सुरग ना आछै अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भगत ज्ञानी सोए पौड़ी नंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुनत कह जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूझे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या युग मैं एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एत उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आवन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट ना माए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ्याप पास अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो पायो जो आप दिवायो उवा का अंत न जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जै रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सक ते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम स्यो तऊ एऊ कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझे सो प्रभ सधू संग लेखे

भोगन हार हो सदयाया, हुआ कंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाउट सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर ते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसनो हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो न आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्म ना आवै सो, एक नाम ले मनै प्रो। यैया जन्म ना हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। का को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पासेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै जिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो।

गंगा ग्रासै काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पै नानक ने छपया सलोक चित चित वो चरण अरबिंद ऊंद कवल बिग सांत प्रगट पै आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिन सो सब दुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टिता नानक ज्ञान अंजन जेने तरा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दास दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार स्यान बौचितराई संतन की मन टेक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

या चरै कसमल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरै काम क्रोध दृष्टाई, नानक जा को कृपा गुसाई। सलोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन ना पावो मीत, जीवत रहो हर हर भजो, नानक नाम प्रीत। पवड़ी निन्या ज्ञानो दृढ़ सही, बिनस जाय ए हेत, गणती गणो ना गण सको, उड़सदारे केत, न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिए संग, ज्ञानो या बिद सही चित, झूठो माया रंग, ज्ञानत सोई संत सोए, भ्रमते की चित भिन्न, अंध कूबते देख डो, जे होवो सो प्रसन्न। न्या कह समराते कारण करने योग, नानक ते उसत करो न्याहू कियो संजोग। श्लोक टूटे बंधन जन मरण, साध सेव सुख पाए, नानक मनो न बिसरै, गुणित गोविंद राय। पौड़ी टह

जा कौ साध कृपाल साधु संग तौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवन बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाऊं संत सदके नानक पाप बिना से कदके। सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहे नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे वहां कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा ते जान ओवा डेरा का संजमो गुर कै सबद पछान। ओवा डेरा या डेरा कौ सरम कर कालै जाका तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जान है जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचल सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राय किन न कालो बंद नानक उभरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंढत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहार प्रभसै बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहंग बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जाम जा मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हाहो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तूने छुटै निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाणा रण तेसी जिया आत्म जीतै कोए होमै अनस्यो लर मरै सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेश। अणा को जाने अपनो एक टेक आधार रहन दिन सो सिमरत रह सो प्रपुरख अपार। रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राए फल पावै मन बांचते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिध कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक उपाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते उसरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिखले हो प्रीत करो सद एक स्यों या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो सब दे कै हाथ जे जित लावो तित लगै नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रह।

दिन दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं कहूं कहूं मीता, माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, श्लोक धर जिया रे एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मने प्रगास, तन साचा तेउ सच साहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, अंतर बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मन तन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मै ना होए खपते, नन्ना कारना होता तां कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहद तूरे, श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंतना पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पच त्रोह मोह मिट नाई, जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सो, नानक दूसरे अवर ना को, श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कल युग मैं पाया, फिरया ओसर चरै न हाथा, नाम जपो तो कटिया फासा, फिर आमन जान ना होई, एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल लहो नानक बेचारे, श्लोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस।

याय उबरन तारै सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो। याहु तरन तरन समराथा राख ले हो निर्गुण नरनाथा। मान बच करामो जेह आप जनाई नानक तेह मत।

होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी अरारा रेन हो सब जा की ताजा मान छुटे तेरी बाकी रण दरगह तो उसी जय पाई जो गुरमुख राम नाम लेवलाई रहत रहत रह जाय बेकारा गुरपुर के शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदा ते सलोक लालच झूठ बिखे ब्याद या देही मैं बास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सुख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू दुख दर्द ते मिटै खनाहू नाम औखद जिरदै हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हारे औखद सब कट है भाई गुरपूरे बिन बिदना बनाई गुरपूरे संयम कर दिया नानक तो फिर दुख ना थिया सलोक वासदेव सर्वत्र मैं ऊनक तू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी वबा वैर न करिए काहू घटकटे अंतर ब्रह्म समाहू वासदेव जल थल मैं रव्या गुरप्रसाद विरलै ही गव्या वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चिहन सगलै ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता सलोक हां हां करत बिहानिया साकत मुकदया जान रड़क मोए ज्यो त्रिखावंत नानक किरत कमान पौड़ी राड़ा राड़ मिटा संग साधु कर्म धर्म ते कर्म धर्म तत ना मारा दू रूडो जे बस्यो रिद माही ओवा की लाड़ मिर्त बिन साही अड़ाड़ करत सगत गावारा जे ही है अंबुद्ध बिकारा अड़ाड़ा गुरमुख अड़ाड़ मिटाई निमुख माहे नानक समझाई सलोक साधु की मन ओट कहो उक्त सियान पत्याग गुर दीख्या जे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा सरन भरे अवहारे शास्त्र सिमरत वेद पुकारे सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सा सा संपूल नहारे तुम समराथ्या गंता पारे सरन परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला सलोक खुदी मिटी तब सुख पए मंतन पए अरोग नानक दृष्टि आया उस्त करने जोग पौड़ी खखा खरा सरा होताहू जो खिनमै उन्ने सुपर भराहू खरा निमाना होत पुरानी अंदर जापै प्रभ निर्बानी भावै खसम ता उवा सुख देता पार ब्रह्म ऐसोवा गणता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दयारा सलोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परो हर राए उकत सियानप सगल त्याग नानक लय सुमाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एना हिकमत हुक्मना प्रपतियाना सहस भात करै चतराई संग तुहारै एक न जाई सौ सौ जप दिन राती रे जी चलै तुहारै साथी साध सेवा लावै जे आपै नानक तां को दुख ना व्यापै सरो सलोक हर हर मुख ते बोलना मन उठै सुख होए नानक सब मैं रव रया थान थनंतर सोए पौड़ी हेरो कटकट सगल कै पुर रहे भगवान होवते आए सद सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हाँ छुटकै होए आनंद तेह हाँ नाही तह आप हते दुख जन्म मरण संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संत संग होत कृपाला ओरै कछु न किन्हू किया नानक सब किछ प्राप्ते हुआ सलोक लेखै कतै ना छूटिया खिन खिन पूलन हार बख्शन हार बख्शले नानक पार उतार पौड़ी लून हरामी गुने गार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण दे दे टुंडन जाए देवन हार दा तार प्रभ निमखना मने बसाए लालच झूठ बेकार मोह या संपै मन माहे लंपड़ चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए
ਤੁਦ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਤਰੇ ਸਲੋਕ ਖਾਤ ਪੀਤ ਖੇਲਤ ਹਸਤ ਭਰਮੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪੌੜੀ ਖੇਲਤ ਖੇਲਤੇ ਆਇਓ ਅਨਕ ਜੋਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਤ ਸੰਚਿਓ ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰ ਭਈ ਅੰਤ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਖੇਪ ਨਿਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰਦੀਆ ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਆਪ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਹੀ ਹੈ ਜੇ

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं त्र भवन प्रभ धारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पार ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंगे कै नानक जन कै

हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कौ पर न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेहोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कश अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमरत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव, महा उदास्त पीसर थी वह। अग्न माहे होमत प्राण, कनक अश्व है वर पूम दान। न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ पी हो मैं मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करे दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू ना बिखिया उटरे। जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै। जे को अपनी शोभा लोरै साध संग ए मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साजना की सरनी परै। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिटै अभमान, आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सिठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरता

बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर कौ रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस कौ सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लोबावै। जेह प्रसाद सुख से सुई जै, मन आठ पहर ताका जस गावी जै। जेह प्रसाद तुझ सब को मन, मुखता को जस रसन बखाना। जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म। प्रभ जी जबत दरगह मान पावै, नानक पासे ती कर जावै। जेह प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जेह प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताकै। जेह प्रसाद तुझको ना पहुँचै, मन साथ साथ सिमरो प्रभ ऊचे। जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ता की भगत करे हे। जेह प्रसाद या पूखन पहरी जै, मन ते सिमरत क्यों वाल सकी जै। जेह प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी। जेह प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै। जे प्रसाद करै पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर उसदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखै बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलै, जे प्रसाद संपूर्ण फलै। जे प्रसाद परमगत पावै, जे प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते माति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु ना किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभनेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रमाहे सुमानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग न बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हवताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान उचै, साधु कै संग मैल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेट होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।
साध कै संग इहा उहा सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, जो बसदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रवे।

कर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सज जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार है, नानक हो अपरसो सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नान कोट मदे को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो वै निह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै।

नानक हो बैसनो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम या तुम्हें सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै। वेद पुराण

बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चह वरना मैं जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी गत होए, सासंग पावे जन कोए। कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुग्ध पाथर को उतारे। सर्व

कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जोत कतै ना पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निगट निगट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखे तैसा तिन नाओ। आपे करन करामन जोग, प्रभ पावे सोई फुन होग। पसरियो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारा वार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान तारै, कई कोट कब का विचारै। कई कोट नवतन नाम ते आवै, नानक करते का अंत ना पावै। कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्द।

जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्पयो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शतर। सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर प्रसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरे सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवे मरे, कई कोट बौजोनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत। जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनका होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन। कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने

जिस होवै सो परसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मानव की तू प्रीत त्याग, तिस्ते परे नाही किश कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहिर सो।

करता कह। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी। त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किनंत ना पाया। जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे, जन दास नाम ते आवै से। ते गुण में जा को परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए। ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करै करंग। नाना बिदकीनो विस्तार, प्रभु नासी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए। नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाए समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसै बजाय तिसै सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नान गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर दे प्रवेश। सत निरत बूझै जे कोए, नाम जपत ता की गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवर ना बुझ करत विचार। करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस पावै सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पय बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद। प्रभ कै रंग राजन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काट नहार, जा कै संग तरै संसार। जन का सेवक सोवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच, है पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत परसनहार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत अवनहार। आप सत सत सबधारी, आपे गुण आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जन मानिया, करण करावन तिन मूल पछानिया। जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भय ते निरपव होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहे सुमाना। बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको पिना कहना जाई। बूझे बुझन हर बबेक, नारायण मिले नानकेक। ठाकर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकर का सेवक सदा पुजारी। ठाकर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकर का सेवक जान है संग, प्रभ का सेवक नाम कह रंग। सेवक प्रभ पालनहारा, सेवक की राख निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै।
अपने जन का पर्दा ढके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप्रतपा, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गतमत कोई ना लख, प्रभ के सेवकों को न पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सासना काटते आप, ताको राख देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करतब बिरथे जात, मारे ना राख है अवरना कोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिय, पी अमृत मन तंत्र पिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवरना ही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जेह बादन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करै भगत आत्म कै चाहे, प्रभ अपने स्यों रह सो आए, जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बखाना, तिसका गुण कै एक न जाना, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे, अवर से आणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर से की करे प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर से के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर से कौ नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है, सतगुर से का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर से कौ जी नाल सुमार है, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कहो कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए निकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जानो जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम, सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुरवट भागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसब चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने गाने, मन संतोख आत्मपति आने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सदबलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਸੋ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵ ਕਉ ਦੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ, ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਹਰੇਕ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾਸੇ, ਤਪਤ ਮਾਏ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਭਾਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ, ਪਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਪਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ, ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਰਵਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਓਹੀ, ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭਿਆ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨ ਸਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਅਵਰਿਓ ਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵੱਥ, ਇਹੋ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠਤਾਵੈ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ, ਅਨਕਿਓ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਅਵਖਦ ਲਾਏ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗੈ ਪਰਵਾਨ, ਮਨ ਪਰ ਬੋਧੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ, ਦੈ ਦਿਸਤਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ, ਤਾਂ ਕਉ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾਂ ਕਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਪਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ, ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ, ਆਵਾ ਗਮਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਅਨਕਿਉ ਭਾਵ ਨਾ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਤਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ, ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬੰਤਾ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਮਨ ਸਨਾਥਾ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਮਨ ਛੁਟਕਾਰ, ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ, ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਜੈ ਨਾ ਬਿਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀ

सुनत कहे तो रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सहे सुबाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावै सज तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख। एको जप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रव्याप। अनक विस्थार एक ते पै, एक आराध प्राश्त गए। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाखिया से जंत्र बताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नोसदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पाया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच्छ पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी। जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अग्न में राख, गुर प्रसाद को बिरला लाख। सो क्यों बिसरे जे बिखते काड, जन्म जन्म का टूटा गांड। गुरपुरे तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भक्ति तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम।

दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मनहीत, हम निर्गुणी यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए, अनक राज भोग वडे आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगा।

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकारे हो कश ना दृष्टेता पाप उन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक कसै व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरे तब कवन निडर कवन कत डर आपन चलते आप कर नहार नानक ठाकर अगमय अपार अविनाशी सुख अपने आसन तै जन मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शर शिदर लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे तै किसै भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार नानक करते का नहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपै परवीन तै वेद कतेब कहां कूचीन जब अपने आप उरतार है तो सगन अब सगन कहां विचार है जहे अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गजानो आप जय अशाल आशेदा भेद।

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो। अपने कर्तव जानै आप, अंतर जामी रहे ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे आवन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पात होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय
ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕਛ ਹੋਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮਿਓ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਨੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਪਤ ਉਧਾਰਨ ਪੈ ਹਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇਨਹਾਰ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਏ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈਏ ਹਰਨੀਤ ਮਿਲ ਭਜੀਏ ਸਾ

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मन तन बसै तज काम प्रोलो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेश, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम तन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पए जिन मन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तौ घणौ सदा संगारै मीच। हरख सोग सहसा संसार हाँ हाँ करत विहाए, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अनके उपाए। आद ब्याद उपाद रस।

बोलै सत सुभाए, नानक मन संतोखी है, एक शिष्यो लिवलाए पौड़ी। सप्तम संचो नाम धन, टूट ना जाहे भंडार, संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो, शरण भरो हर राय, दुख हरै पव जल तरै, मन चंदया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै, सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग, करने हार पछाण। सो साजन सो सखा मीत, जो हर की मत दे, नानक तिस बलिहारण, हर हर नाम जपे। सलोक आठ पहर गुण गाइयै, तजियै अवर जंजाल, जम कंकर जोहे न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद, सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरुद्धर मंत, सगल धर्म पवित्र इशनान, समय उच बसे ज्ञान, हर हर भजन पूरे गुरसंग, जप तरियै नानक नाम हर रंग। सलोक नारायण ने सिमरियो, मोहयो स्वाद बिकार, नानक नाम बिसारे है, नरक सुरग अवतार। पौड़ी नौमी नवे छदर अपवीत, हर नाम न जपै करत विपरीत, पारतरे रमै बकै साध निंद, करन सुनही हर जस बिंद। हिरै पर दर्ब उदर कै ताई, अग्न न निवरै तृष्णा न बुझाई, हर सेवा बिन एह फल लागे, नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे। सलोक दह दस खोजित मैं फिरयो, जत देखौ तत सोए, मन बस आवै नानका, जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। श्लोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखै कठाए, मन तन सुध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हरे अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पूव आत्मा हर नाम रस पुख है, गुरपुरे ते एह निहचौ पाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। श्लोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर शोका दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश सब मैं प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। श्लोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भय मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावसे आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवागमन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपुरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कबो ना डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मापूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जाका हाथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जाका होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई सरन योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझी है, सिमरो हर के चरण, पतो धारण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। श्लोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राय, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेशै को दृढ़ै, तिसका होए उधार,
किलबे काटै होए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुखी उजला, नैपो है तिसमाए। सो सुरता सो बैसनो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कुलवंत सोए, जिन भजया भगवंत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उदरै सिमर चंडाल, जिन जान्यो प्रभ अपना, नानक तसैरवाल। गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावे कोए। महला चौथा, हमै माया सब विख है, नित जग तोटा संसार, लहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हमै मैल विख उतरै, हर अमृत हर ओर धार, सब कार तिन के सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सृजनहार। पौड़ी, तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई, तुदनो सब ते आई दी, सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है, जिन कीति तिस पार लंघाई, गुरमुखा नो फल पाइंदा, सच नाम समाई। वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई। सलोक महला चौथा, विण नावै होर सलाहना, सब बोलन फिका साध, मनमुख अहंकार सलाह दे, हौं मैं ममतावाद। जिन सलाहन से मरै, खप जावै सब अपवाद, जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम ते आई मन हरी, नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी, तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया, जिनी तू एक मन सच ते आया, तिनका सब दुख गवाया। तेरा श्री को नाही, जिसनो लवै लाए सुनाया, तो जेवड़ दाता तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन पाया। सच्चे मेरे साहेबा, सच्चे सच नाया। सलोक महला चौथा, मन अंतर हमै रोग है, प्रम पूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मेरे सतगुर साधु सजना। महला चौथा, मंतन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर सरनागति, हर मेले गुर साबास। पौड़ी, तू करता पुरख या गम है, किस नाल तू वड़ी है, तुद जेवड़ होए सो आखी है, तो जेहा तू है पड़ी है। तू घट घट एक वर्तदा, गुरमुख पर गड़िया, तू सच्चा सब सदा खसम है, सबदू तू चढ़िया, तू करै सो सच्चे होए सी, तां कायत कड़िया। सलोक महला चौथा, मैं मन तन प्रेम परम का, अठे पहर लगान, जन नानक कृपा धार प्रभ, सतगुर सुख वसन। महला चौथा, जिन अंदर प्रीत ब्रह्म की, ज्यो बोलन तवै सुहन, नानक हरे आपे जानदा, जन लाई प्रीत पेरन। पौड़ी, तू करता आपा पुल है, पुलन विच नाही, तू करै सो सच्चे भला है, गुरशब्द बुझाही। तू करण कारण समर्थ है, दूजा को नाही, तू साहिब अगम दयाल है, सब तुद ते आही, सब जी तेरे तू सब सदा, तू सब छडाही। सलोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेश राय, अखी तार लगन, गुर तुठै सज्जन मिलिया, जन नानक सुख सवन। महला चौथा,
सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखै ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे, तिन विचों तिष्टिया ना कोए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब के जानदा, जिदू किश कुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे, सोई वड़ जानी। जे साहिब पावै तिस बख्स लए, सो साहिब मन पाणी। जे कोई उस दी रीस करे, सो मूढ़िया जानी। जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै, गुण आख बखाणी। नानक सच्चा सच है, बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निरवैर निरंकार। जिन जपिया एक मन एक चित, तिन लथा हो मैं पार। जिन गुरमुख हरिया आराध्या, तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुर विच आप वरतदा, हर आपे रखण हार। धन धन गुरु गुण गावदा, तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन कौ वारिया, जिन जपिया सृजनहार। महला चौथा। आपे धरती साजिया नु, आपे आकाश। विच आपे जन तो पाया नु, मुख आपे दे गिरास। सब आपे आवरदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम ते आए तू, सब किलव कटे तास। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे भावै। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेड़ न आवै। तिन के मुख दर उजले, जिन हर हिरदय सच्चा भावै। कूड़ यार पिशाहा सटियन, कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावै। मोह काले कूड़ यारियां, कूड़ यार कूड़ो हो जावै। श्लोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे, तेहा फल पाए। गुरसिखी अमृत बीजिया, तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगह सच्ची पैन आए। एक ना अंदर खोट, नित खोट कमावै। ओहो जेहा बीजे, तेहा फल खाए। जां सतगुर सराफ नदर कर देखै, सुआव गीर सब उगड़ आए। ओए जेहा चितवै नित, तेहा पायन। ओए तेहो जेहे दईये बजाए। नानक दुही श्री खसम आपे वरतै, नित कर कर देखै चलत सवाए। महला चौथा। एक मन एक वरतदा, जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां, जे घर वथ होवै साई खाए। बिन सतगुर सोजी ना पवै, हंकार ना विचों जाए। हंकारियां नो दुख भुख है, हथ तड़ै कर कर मंगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहै, मुलम्मा पाज लै जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया, ते सतगुर मिलै प्रभ आए। जो लोहा पारस भेटिया, मिल संगत स्वर्ण होए जाए। जन नानक के प्रभ तू धनी, ज्यो भावै तिवै चलाए। पौड़ी जिन हर हिरदय सेविया, तिन हर आप मिलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगुण सब जलाए। अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरे अपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो अंदन हर हर नाम ते आवै। हर हर नाम रमत सो संजम, हर नाम में ही तृप्तावै। हर नाम तान हर नाम दीबान, हर नामो रख करावै। जो चित लाए पूजे गुरमूर्त, सो मन इच्छे फल पावै। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार देवावै। फिर ओह वेला उस हथ ना आवै, ओह अपना बीजिया आपे खावै।
नरक कोर मोह कालै खड़िया जो तस्कर पाए गलावै फिर सतगुर की सरनी पवै ता उबरै जा हर हर नाम ते आवै हर बाता आख सुनाए नानको हर करते ए वै भावै महला चौथा पूरे गुर का हुक्म न मन्नै ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझै अणहोंदे झगड़े दईये उस दे गल पाया ओ गल फरोसी करे बहु तेरी उसदा बोलिया किसै न पाया ओह घर घर हंडै जो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया गुरमुख होए सो अलिपतो वरतै उसदा पास छड गुर पास बह जाया जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो उन लाहा मूल सब गवाया पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचन उपर आया गुरसिखा वड्याई भावै गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है सो लै जे सतगुर टिके सो सतगुर जे साहित्य आईंदा सच सच्चा सतगुर एके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके ओए बोले किसै ना भावनी मोह काले सतगुर ते चुके सलोक महला चौथा हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसाणी लाया गुरमुख बख्श जमाइयान मन मुखी मूल गवाया सब को बीजे अपने भले नो हर भावै सो खेत जमाया गुरसिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फले अमृत पाया जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करतै मार कढ़ाया किरसाणी जमी भाव कर हर बोहल बख्श जमाया तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख ते आया जन नानक नाम आरा दिया आप तरिया सब जगत।

देखो भाई एहो अखाड़ा हरप्रीत सच्चे का, जिने अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़े सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए सेजन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला पया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस न होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आख सुनाए, महला चौथा, हुंदे परतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाय मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुष्टी गुर के फिटके जे ओस मिलै तिस कुष्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरा सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठकिया आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यो झाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित पलके उठ प्रभ जोया, हर वेख सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा जैसा बीजे सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया जन लोहा काट संगोया जन नानक नाम ते आए तू जप हर हर नाम सुख होया महला चौथा वडभागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर ज्योत प्रगासिया नानक नाम समाए पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेव कड्डे खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया एको ओत पोत एक देखिया एक मन्या एको सुनिया श्रवण सरोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत श्लोक महला चौथा सब रस दिन के हृदय है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिन कौ सब देखन जाए जिन निरपो नाम ते आया तिन कौ पौ कोई नाहे हर उत्तम किनी सरेविया जिन कौ तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे ओए आप तरे सब कुटुंब सियों दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे जन नानक कहो हर मेल जन तिन

मंत्र बताए हर सिखाए पौड़ी, सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती जिन बनाइया, सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे किया वड्याइया, सलाही सच सलाह सच, सच कीमत कने ना पाइया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आइया, सच गुरमुख जिनी सलाहया, तिन्ना भुखा सब गवाइया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोज इंदिया।

फिर सतगुर लगे पाए, सतगुर की गणते कुसी है, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिन्ना विखा ले ओनो, तिन्ना दरगे ले छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान, दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध, जुए मतहारी, कूड़क सत ओह।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निरजास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां, रहंदे खोंदे निंदक मारिया नूं।

नाही। तन बहुतै डिठै तपै तरम हारिया, पाई एहो तपा ना होवी बगला है, बैसाध जना विचारिया। सत पुरख की तपा निंदा करै, संसार की उस्तति विच होवै, एत दोखै तपा दईए मारिया। महापुरखां की निंदा का वेख, जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदरला पाप पंचा नो उगा कर वेखा लिया, धर्म राए जम कंकरा नो आख छड़िया। एस तपे नो तिथे खड़ पायो, जिथे महा महा हत्यारिया। फिर एस तपै दे मोहे कोई लगो नाही, एहो सतगुर है फिटकारिया। हर कै दर वर्त्या, सो नानक आख सुनाया, सो बुझै जो दईए सवारिया। महला चौथा, हर भगता हर आराध्या, हर की वड्याई, हर कीर्तन भगत नित गाम दे, हर नाम सुखदाई। हर भगता नो नित नावे दी वड्याई, बख्शिया नो नित चढ़ाए सवाई। हर भगता नो थिर करी बहालिया, नो अपनी पैज रखाई। निंदका पासो हर लेखा मंगसी, बहु दे सजाई। जेहा निंदक अपने जीए कमाम दे, ते हो फल पाई। अंदर कमाणा सर पर उगड़ै, पावे कोई बह धरती विच कमाई। जन नानक ते देख विकसिया, हर की वड्याई। पौड़ी महला पंजवा, भगत जना का राखा हरियाप है, क्या पापी करी है, गुमान करे।

गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकर भाई मुक्तानंत पुकारन जाई अब कहो राम।

सूर्य चंद करै उजियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आप ते बांधिया, मोह कै फाद काल सर संध्या, रहाओ कटी ना कटे टूट न जाई, सास अपन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चब कुमाराओं। कहत कबीर पले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया सुमाए रहाओ। काको जरे काहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे नाम है जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमानो, राम समान ना देखो वानो। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल होहेंगे तेरे।

सब को कह जास की बाता, सो सम्राथ निज पत है दाता। कह कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवरना होई। कौन को पूत पिता को का को, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग

कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भए राजा राम सहाई, जन मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियोर लाए, पांच दूते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काढ़ रीन सागर संसार। चरण कमल स्यो लागी प्रीत, गोविंद बसै नेता नित चीत। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पे खो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक।

गौड़ी झगड़ा एक न बेरो राम, जाओ तुम्हें अपने जन सौ काम रहाओ। एहो मन बड़ा के जा सो मन मानिया, राम बड़ा कह राम मैं जानिया। ब्रह्मा बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो पाया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। हरा गौड़ी चेती देखो भाई, ज्ञान की आई आंधी। सबै उडानी परम की टाटी, रह न माया बांधी रहाओ। दुचित्ते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। तिसना शान परी तारी उपर, दुर्मत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरख, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जस सुने ना हर गुण गावै। बात नहीं असमान गिरावै, ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए। जो प्रभ किए भगते बाहजो, तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरु पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाल, आप गए और नहूं कहल। छाड़ कु चर्चा यान ना जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न मान। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना मान।

आओ अर्ध उर्ध दो तै नाही रात दिन सतै नाही जल नहीं पवन पावख फुन नाही सतगुर तहां समाही आगमा गोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लही है कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने सतसंगत मिल रही है गौड़ी पाप दोए बैल बिसाहे पवन पूंजी परगासे ओ तृष्णा गुण परी कट पीतर इन बिद टांड बिसाहे ओ ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार की ओ बनजारा रहाओ काम क्रोध दोए पहे जगाती मन तरंग बटवारा पंच तत् मिल दान निबेर टांडा उतरे ओ पारा कहत कबीर सनोरे संतो अब ऐसी बन आई घाटी चढ़त बैले कथा का चलो गुण छिटकाई गौड़ी पंचपदा पेवकड़ै दिन चार है साहुरड़ै जाना अंधा लोक न जाने मूर्ख ए आना।

कौन लाज वहारी, लाज घड़ी से टूट पड़ी उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सफिर है देखो बिचारी, इसनो क्यों आखिया क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो पाए सरन कबीरा। गौड़ी जोगी कहे जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई। रुंडत मुंडत एक है सबदी एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो ते बांधे बहु फंदा। रहाओ जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही। पंडित गुणी सूर हम दाते एक है बढ़ ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूकै, इन बिद मान कलही है। तज बावे दाहने बेकारा, हर पाद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहा किश नाही, पाई तत्त नाही। इड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़नहारो सदा अतीता एक ही है किस्माही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटै जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा। सुन गुफा मैं आसन बैसन कल्प बिबरजित पंथा। मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज अकीस पुरिया एक तनाई। साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये पाचन सिर अडाई। जौ कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकसै नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दुह मिल कार्य उपजै राम नाम संयोग। लोग जाने

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म तर्म करते बहु संजमो अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमूल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहीं बिचारे ओरे उन्मत मान हिरेओ मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगा ने कष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बौरा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नावन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अस्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यों उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबने अरसुत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिनको मंदर चौदे ठाठ ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम ओसारी खिर मैं बिनस जाए हंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जात पावै ता हुक्म नावै इस बेड़े को पार लंगावै गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर पज सारंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नामी
जोन शाड जव जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ। रहाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता, तव जठर अग्न में रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर पज सारिंग पानी, आपत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बासना बांछिए, डरिए ना नरक निवास, होना है सो होई है, मने ना की जयास। रमैया गुण गाइए, जाते पाइए परम निधान, रहाओ क्या जाप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या इशनान, जब लग जुगत ना जानिए, पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए, बिपत देखना रोए, जो संपै त्यों बिपत है, बिद ने रचिया सो होए। कह कबीर अब जानिया, संतन हृदय मझार, सेवक सो सेवा भले, जिह कट बसै मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और रहाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रहाए, जो उपजै सो बिनस है, दुख कर रोवै बलाए। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग, कह कबीर चित चेतिया, राम सिमर बैराग। राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी, लोचन परी ले सासा, उर ना पीजै पगना खिसै, हर दर्शन की आसा। उडहो ना कागा कारे, बेग मिली जाए अपने राम प्यारे, रहाओ। कह कबीर जीवन पद कारणो, हर की पद करी जय, एक आधार नाम नारायणो, रसना राम रवि जय। राग गौड़ी ग्यारहवीं, आस पास कं तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे, ओवा का स्वरूप देख मोही गुआरनो, मोको छोट ना आओ ना जाऊ रे। तोहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड भागो, रहाओ। बिंद्रा बान मन हरन मनोहर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, जा का ठाकर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे। गौड़ी बारहवीं, गौड़ी पूर्वी बारहवीं, बिपल बस्त्र केते है पहरे, क्या बन मध्य बासा, कहां पया नर देवा।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एहो जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा। गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन मुखरंते डरप सती के साचे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ाओ सगल ऊते ऊंचा। गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार, गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं प्रमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदन हो नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही तब एहो नंद कहां थोरे, रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पहे है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले प्रगास हो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्तन उप ना पाई। कहत कबीर नवै कर मूसे, दसवें तत् समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, सिवसन काद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल में ध्याना ना। बिखे रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाए त्याय जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। रा गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

तै मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तसल है ना कोई। अल लहो तव क्या कहो, कहो ता को पुकार, बटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार। अल लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग छेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार आद मैं जाना, लेखियार मेटे ताहे ना माना, ओवंकार लखे जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस विघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहा कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रहे, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कत ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निवसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई। ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कतावा। नंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र चेतो चितकारी। चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा।

ससा सोनी का कर सोदो, घट परचा की बात न रोदो, घट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर भवन राओ। खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पव जल तरत न लावे बारा। ससा सो सह सही सवार, सोई सही संदेह निवार, अल्प सुख शाड़।

जबी होए तब है मनमाना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापै बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोगे कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुद होई, कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिती कबीर जी की। सलोक पंद्रह थिती सात वार, कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पे ओ, आपे करता आपे दे ओ। थिती अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द।

परवा प्रीतम करो बिचारो, घट मैं खेले अकट अपारो, काल कल्पना कदे ना खाए, आदि पुरख में रह समाए। द्वितीया दोकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास।

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भय, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खूब

काल मुहूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सोदर सोदर तेरा केहा सो कर केहा।

आए, तू सर्वे पूर रहया लिवलाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड्डा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड्डा भया। रत्नो पाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वखियाण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारे रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूपया पारा, शब्दा नहद सो सौ राता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किश लीजी लीजै रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहल कीचै अरदास, पाप पुंद साखी पास, जैसा तू करै तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जेही तू मत देहे पेही को पावै, तुझे आपे पावै तवै चलावै। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शहु भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक विचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जा सह मिलिया ता जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना का

अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिख्या सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै, सिवत सलाहण सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आग्या जिंद, झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए, आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जग दिसै अंस, जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ, बिरला बूजै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर से परम पद पाए, मुक्तो रातो रंग रवातो, राजन राज सदा बिकसांतो, जिस तू राखै कृपा तार, बूढ़त पाहन तारै तार, त्रिभवन मैं जोत त्रिभवन मैं जानिया, उल्ट पई कर कर मैं आणिया, अहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिनकै लागै पाए, आसा महला पहला, गुरमत साची।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन आवे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमें माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

बुरा पला कहो किसनो कहिए, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लहिए, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय।

प्रभ दूर नाहीं प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टायो सारे तरे त्यान। तुते वड़े

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेखे तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पहो जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगह बैसन होवे थाओ, जा तुद भावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुद बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विनसे वाफल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसै नाही, दुख सुख पाना तेरा होवै, विण नावै जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन

काया ब्रह्मा अमन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुस्पाती, हर नामा जजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चजाचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम समाल, एथे उथे निभी नाल, विन्ना में होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतया जाए, पाठ पढ़े ने कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचे दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने साबास, सच्चे तख्त

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठग ना पाए। पंडित पढ़े वखाने वेद, अंतर वस्त न जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिन सह दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर से मिलना दे बुरी, सखी साजनी के हो चरण सरेवा। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीतना यवर कोई, जो तू राखे तिवही रहना। दुख सुख देवे करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या पेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला। पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जंपर जाहे। गुर दीखिया ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलाख्या पार। हौ पापी तू बख्शन हार, तेरा पाणा सब किश होवै। मन अठकीचै अंत विगोवै रहाओ। मनमुख की मत कूड़ व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला। चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी। जा पंचरासी ता तीर्थवासी। घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जां जत जोगी तां कायां भोगी। दया दिगंबर

एक ना परिया गुण कर तोवा, मेरा सौ जागै हो निष्परसोवा। इओ क्यों कंत प्यारी होवा, सौ जागै हो निष्परसोवा। रहाओ आस प्यासी से जयावा, आगे से पावा के ना पावा, क्या जाना क्या होए गारी माई। हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ, प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी। गया सो जो बन तन पछतानी, अजय सो जागो आस प्यासी, पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ। हाँ मैं खोए करे सिंगार, तव कामन से जरवे पतार। तव नानक कंते मन पावे, छोड़ वडाई अपने खसम समावे। रहाओ आसा महला पहला, पेव कड़ैतन खरी ए

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पाव कितने किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबिया ले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा हो नाह जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो भया सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लस्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख मान जा पत लेख ना पवे ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिया लख संजिया खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेखै ना पवै ता जी किथै फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़ै पुराण जा पत लेखै ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजिया ले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरा नाम रते दरवेश पे

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा घर पंजवा महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भीतर पंच गुप्त मन वासे, थिर न रह जैसे पवै उदासे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत धारी खिमा सिंगार।

मधुसूदन कर मुंदरी पहरै परमेश्वर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंधावे कामण श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले।

सहज रंग रच रहया अहनस बनी प्रेम लवलागी शब्दा नाहद गहया रहाओ पूरा सच प्याला सहजे तसह पियाए जा को नदर करे अमृत कावा पारी होवे कैमद शूशै पाओ तरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करै किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुवै जन्म ना हारै कहो नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष ना देई करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द ना आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारे ता मन रोस ना होई रहा हो सकता सीहो मारे पै वगै खसमै सा पुरसाई रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती मुया सार ना काई आपे जोड़ वे छोड़े आपे वेख तेरी वड़ियाई जे को ना उतराए वड्डा साध करे मन पाणे खसमै नदरी कीड़ा आवै जेते चुगै दाने मर मर जीवै तक्ष पाए नानक नाम वखाणे राग आसा कर दूजा महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर दर्शन पावै वडभाग गुर कै सब सच्चै बैराग खर दर्शन वरतै वरतारा गुर का दर्शन अगमे अपारा गुर कै दर्शन मुक्तगत होए साचा आवसै मन सोए रहाओ गुर दर्शन उदरै संसारा जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए गुर कै दर्शन सदा सुख होए गुर कै दर्शन मोख द्वार सतगुर सेवै परवार सधार निगुरे कहो गतकाई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही गुर कै शब्द सुख सां शरीर गुरमुख ता कहो लगे ना पीर जम काल तिस नेड़ ना आवै नानक गुरमुख साज समावै आसा महला तीजा शब्द मुवा

भगत रत्ता जन सह सुभाए, गुर कै पैसा चै साज समाए, बिन गुर पूरे भगत ना होए, मन मुखरुने अपनी पत खोए, मेरे मानो हर भज मेरे मानो हर जप सदा ते आए, सदा आनंद होवै दिन राती, जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम वसाए, अंतर निर्मल अमृत सरन आए, सदा सूचे साज समाए, हर प्रभ वेखै सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर ना कोए, गुर सागर पूरा भंडार, ऊतम रतन जवाहरिया पार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्शे बख्शनहार, आसा महला तीजा, गुर सायर सद

आए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमण मरना है संसार, मन मुखा चेत।

तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यों तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी। जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सतसंग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा भाव तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया। गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना। एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना। रहाओ मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग। दूजे पाए पवै बिख माया, भाग ही नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपुरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार। नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सहना।

नामहीन कालक मुख माया, नाम बिना त्रिक त्रिक जीवाया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम देवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा, रहाओ हर गुण गावे हर जन लोगा, वड्डे भाग पाए हर निरजोगा, गुण में हून माया मलतारी, विण गुण जन्म मोए हंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मथ तत कढ़िए, आसा महला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वड्डे भाग गुरमुख हर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास गिरासा, रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सिखाई, नामहीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थापो थापे, नानक नाम देवै हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रसकरसाई, हर हर नाम जप अंत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सा लाही।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगा रीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा में

मारो अब हुण सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो। आंगन मेरा सोबा चंद, निस्बासर प्रे संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगलिया भरण सोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दृष्ट पाए सगल निधान, दुष्ट दूकी चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जो प्रै सिंगारी, थिर सुहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन मुकर परना, जित दर तुम है ब्राह्मण जाना, तित दर तू ही है पछताना, ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई, निरापराध चितवै बुरियाई रहाओ, अंतर लोभ फिरे हलकाए, निंदा करै सिर पार उठाए, माया मूठा चेतै नाही, भरमे पूला बहुती राही, बाहर बेख करै कनेरे, अंतर बिखिया उतरी घेरे, अवर उपदेसै आप ना बूझै, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजै, मूर्ख बामण प्रभु समाल, देखत सुनत तेरा है।

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसब दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब नहीं चल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े निश्चय।

हर हर राय। नाम तेरा जब जीवै नानक ओत पोत मेरा संग सहाय। आसा महला पंजवा अरड़ावै बिललावै निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया। अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै नाले लय सधावै। अनहोंदा अजगर भार उठाए निंदक अग्नि माहे जलावै। परमेश्वर कै द्वारै जे होए बतीतै सो नानक आख सुनावै। भगत जना का उसका आनंद है हर कीर्तन गाए बिकसावै। आसा महला पंजवा जो मैं कियो सगल सिंगारा तौ पी मेरा मन ना पतियारा। अनक सुगंधत तन मैं लावो ओह सुख दिल समान नहीं पावो। मन मैं चितवो ऐसी आसाई प्रे देखत जीवो मेरी माई। माई कहां करोयो मन ना धीरे प्रे प्रीतम बैराग हिरै रहाओ। वस्त्र पे भूखन सुख बहुत बसेख है ओए पी जानो कितै ना लेख है। पत सोबार मान महातो आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल प्रभावा ता सदा निहाल। बिंजन भोजन अनक प्रकार रंग तमासे बहुत विस्तार। राज मिलख अर बहुत फुरमाइस मन नहीं त्रापै तृष्णा ना जायस। बिन मिलबे एहो दिन ना बिहावै मिले प्रभु ता सब सुख पावै। खोजत खोजत सुनी एह सोए साध संगत बिन तरे हो ना कोए। जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया पूरी आसा मंत्र बताया।

सोहनी स्वरूप सुजान विचखन अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ अत सूची तेरी पाकसाल कर इशनान पूजा तिलक लाल गली गर्भ मुख गोवे ज्ञान सब बिद खोई लोभ सुवान कापर पहरे पुगे भोग आचार करे सोभा में लोग चोवा चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर जोन।

जो तू कर सोई प्रवान, साचे साहिब तेरा सच फुरमान। जा तुद भावै ता हर गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे साहिबा लाखा भेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निकट जी कै सद ही संगा। कुदरत वरतै रूप रंगा, करै ना चुरै ना मन रोम नहारा। अवनासी अवगात्या गोचर, सदा सलामत खसम हमारा रहाओ। तेरे दास

वे मो ताजा वे प्रवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो, आसा महला पंजवा, हर रोड़ होशै रसमाता, घर मैं वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा, रहाओ वजो साहेब का से बिरानी, ऐसे गुनैशा देव प्राणी, तेस्यो लूक जो सद ही संगी, कामना आवै सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यो पावै त्यों कर प्रतपाला, आसा महला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहां उहां उन संग काम, बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा, रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक कहो गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन, आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद परे पुरतारिया, अपना कार्ज आप सवारिया, पूर समगरी पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की, रहाओ नाम निदान।

राज मिलक जोवन गृह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्भ हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगे कामना आवै छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर ध्याई है रहाओ। महा विचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जाग हर जन महामोहनी मगन, प्रे प्रीत प्राण को त्याग विरला। चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग वड़भागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्यान पजन की, जो तू करै करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे, इहा सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावे। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साकै काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहा बिकूता जै कोई ना राखे, ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कत हू नाही, खसम एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संतान

सब जग बौराया, ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किस आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है, सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, एत्यो तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम थुमारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बिनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, धन सो कलयुग साध संकीर्तन गाईए, नानक नाम आधार हीओ। आसा महला पंजवा, आग्या ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काटिया रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंध कूप महा कोरते, बहा पकर गुर काढ लिए। निरपव पय सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्ज सगल सवारे। गुण निदान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहिए, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रख, जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिस को बेपना।

कोरी। रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो, संयम कौन छुट्योरी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया, सगलो पवन लुट्योरी। दावा यगन बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साका, ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी, निर्मल वर्ण बने ओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसियो, अचरज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया, साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तैं तन सोहया, सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली, कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग, तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान, तू प्रीतम पानी तू ही सुरग्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल, कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल, प्रभ आप सिंगार सवारन हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, दुख कनो जब होते दूर। अब मसलत मोय मिली हदूर, चुका निहोरा सखी सहेरी। भ्रम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट आन प्रे से तरी, कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा, आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया, थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा, साच नाम मेरा मन लागा। लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला। अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला, सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया। नाम बिना माटी संगरलिया, कान कुंडलिया वस्त्र उडलिया। से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया। अमृत नाम तहां मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी। जाते पाइय पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा। बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक है माली, खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया, नानक दास तरी तिन माया।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार, ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार, प्रभ कृपा ते मन वस आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर कीर्तन गाइए, यो अस्थान गुरु ते पाइए, रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा, हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै, सो नाम जपै जो जन तुद पावै, रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तह दुख डेरा, हुक्म बूझै सोई परवान, सास सब जा का निशान, गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया, पंडित नानक मेरा मन सुख पाया, आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई, जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गोसाई, तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई, रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई, मन तन अंतर तुझे ते आई।

हर माला और अंतर धारै, जन्म मरण का दुख निवारै, हृदय संभालै मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतै न डोलै, कहो नानक जो राचै नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवां, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहें,

प्रभु की प्रीत पय सकल निदान, प्रभु की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभु की प्रीत सद शोभावंत, प्रभु की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभु की प्रीत एहो पवजल तरै, प्रभु की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभु की प्रीत सगलो उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओठ प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, भूपत होए कै राज कमाया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो सुवाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परत पा वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंग रसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इन स्यों प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागे हुए कै मीठी, गुरप्रसाद में खोटी डीठी, अगर उसके वड़े ठगाऊ, छोड़े नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पहु चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार।

वर्तन जाके केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाके एक समान, प्रभ अपने बिने अवर ना जाने। कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा। सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्श सफल जा की सेव। कर जोड़ नानक कर।

प्राण तिन सिमरत सुनीजा महापुनीत जाका निर्मल थान साध संगत जाके हर हर नाम प्रगट्यो सो जन सगले भवन पतत पुनीत ताकी पगरेन जाको पेट्यो हर हर राय ताकी गत में तो कथन ना जाए आठ पहर कर जोड़ते आवाओ उन साधा का दर्शन पावाओ मोहे गरीब को लेहोर लाए नानक आए पै शरणाए आसा महला पंजवा आठ पहर उदके सुनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी बिरथा काहू छोड़े नाही बहुर बहुर तिस लागे पाई साल ग्राम हम

तपत हरी पलो पयो प्रे कहया मान्या सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार ओह अविनाशी अगम अपार ले पखा प्रे चलो पाए पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक मोरी पूर्ण आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवा माथे त्रि

कुटी दृष्ट करूर, बोले कौड़ा जे बाकी फूड, सदा भूखी पर जाने दूर, ऐसी स्त्री करामो पाई, उन सब जा खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे जे सतगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बादा, हमें पचय मन मुख मूह राखा, गुरु नानक बाह पकर हम राखा, आसा महला पंजवा, सर्व दुख जब बिसरे स्वामी, इहां उहां कामना प्राणी, संत तृप्तासे हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर, सोजन मरता नित नित चूर, जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे, महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक, गत पाईए गुर पूरे टेक, आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, कल मल दोग सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर, मिटे उपद्रय मन ते बैर, गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया, पंच दूत सब वसगत आया, जिस मन वसिया हर का नाम, नानक ते सुपर कुर्बान, आसा महला पंजवा, गाव लेहे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पावै, अवर काहू पह बहु ना जावै, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूट नाही, पली पांत सब सह समाही, जा की बख्शना मेटै कोई, मनवा साइय साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जा कै पूर्ण, प्रभ के सेवक दुख न चूर्ण, ओट गही निरपौ पद पाई है, सास सास सो गुणित गई है, दूर ना होई कतहूं जाई है, नजर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुरपास, नानक मंगे हर तन रास, आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सल का होवा सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल ते सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अग्न बुझी

मान बंधन काटो सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वड़े भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला सोजन हो वासदा निहाला आसा महला पंजवा सतगुर साचे।

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दा सतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास हरे आओ तैसा संसार सब, नानक बंधन काट मिलावो आप प्रभ। आसा महला पंजवा, हब्बे थोक विसार हिको ख्याल कर, झूठा लाहे गुमान मंत निरप तर। आठ पहर सालाहे सृजनहार तू, जीवा तेरी दात कृपा करो मूं रहाओ। सोई कम कमाए जित मुख उजला, सोई लगे सच जिस तू देहला। जो ना टहंदो मूल सो कर रास कर, हिको चित वसाए कदे ना जाए मर। तिन्ना प्यारा राम जो प्रभ पाणिया, गुर

मन तन होए निहाल तुम संग भेटिया, सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मिटिया रहाओ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन खे, जिन मन उठा आप पूरे भगत से, जिसनो मन्ने आप सोई मानिए, प्रगट पुरख प्रमाण सब ठाई जानिए। दिन सरैण आराद समाले साहसाह, नानक की लोचा पूर सचे पातशाह। आसा महला पंजवा पूर रया सर्व ठाए, हमारा खसम सोए एक साहेब सर छत दूजा नाहे कोए। ज्यो पावै त्यों राख राखण हारिया, तुझ बिन अवर ना कोए नदर निहारिया रहाओ। प्रतपाले प्रभ आप कड़कड़ सारी है, जिस मन उठा आप तिस ना विसारी है। जो किश करे सो आप अपन भाणिया, भगतां का सहाई जुग जुग जाणिया। जप जप हर का नाम कदे ना झूरिऐ, नानक दर्श प्यास लोचा पूरी है। आसा महला पंजवा क्या सोवै नाम विसार, गाफल गहलिया कीती इत दरियाए वंजन महिंदिया। बोह थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगी है, आठ पहर गुण गाए साधु संगी है रहाओ। भोगे भोग अनेक विणना मैं सुनिया, हर की भगत बिना मर मर रुनिया। कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना, बिन सिमरन तन शार सर पर चलना। महाबिखम संसार विरलै पेखिया, छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया। आसा महला पंजवा कोई न किसी संग काहे गरबी है, एक नाम आधार पौजल दरबी है। मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन धीरे रहाओ। राज माल जंजाल काज ना किते गनो, हर कीर्तन आधार निहचल एहो तनो। जेते माया रंग तेत पछावया, सुख का नाम निदान गुरमुख गावया। सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे, आस भरोसा खसम का नानक के जी अरे। आसा महला पंजवा जिस मृत दुख जाए सह सुख पाई है, रैन दिनस कर जोड़ हर हर त्याई है। नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए, सर्व रहया भरपूर सच्चा सच सोए रहाओ। अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान योग, तिसे अराध मना विनाशै सगल रोग। राखन हारिया पार राखै अगन माहे, शीतल हर हर नाम सिमरत तप्त जाए। सुख सहज आनंद घना नानक जन तूरा, कार्ज सगले सिद्ध पए भेटिया गुरपूरा। आसा महला पंजवा गोबिंद गुणी निदान गुरमुख जानिए, होए कृपाल दयाल हर रंग माणिए। आवो संत मिला हर कथा कहानियां, अंदर सिमरो नाम तजलाज लुकानियां रहाओ। जप जप जीवा नाम होवै अनद घना, मिथ्या मोह संसार झूठा विणसना। चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया, तन सुहावा मुख जिन हर त्याया। जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई, नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत एकत्र होए, रस कस सब पुंच है, अमृत नाम हर हर जप है मिल पापा मुंच है। तत विचारो संत जनो,
ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਖੀਨ ਭਏ ਸਭ ਤਸਕਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਾਗੈ ਰਹਾਓ। ਬੁੱਧ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚ ਲੈ ਹੋ, ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾ ਰਹੋ, ਸਾਚਾ ਹਟ ਪੂਰਾ।

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वण जारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जगद उत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिये थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कह उजली तिस दासी गनिया रहाओ। वे प्रवाहो आनंद में नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकर सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारिय एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बिछायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तो पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तऊ लो जौ मन के परमा, प्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसमै बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगन तिस कौ लग है जिस जीत ना आवै,
तिस जम नेड़ न आवई जो हर प्रभ पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगै पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक, दूसर कह पह जावो। हाँ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकर, कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सतपुरख की सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर, काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी। संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के व्यवहारी। अवर बिसारी बिसारी नाम दान गुरपूरे दियो, मैं इहो आधारी रहाओ। दुखन गावो सुख पी गावो, मार्ग पंथ समारी। नाम दृढ़ गुरमन में दिया, मोरी तसा बुजारी। दिन पी गावो रैनी गावो, गावो सास सास रस नारी। सत संगत में विसास होए, हर जीवत मर्त संगारी। जन नानक कहो एहो दान देहो, प्रभ पावो संतरे नियुर तारी। श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो, मस्तक गुर चरनारी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा कर दसवां महला पंजवा। जिसनो तू असर कर मानै ते पाहुन दो दाहा, पुत्र कलत्र ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा। रे मानु क्या करै है हाहा, दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी। एक राम भजन लै लाहा रहाओ, जैसे वस्त्र देह उडाने। दिन दोए चार पोराहा, पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा। जैसे अंब कुंड कर राखियो, परत सिंध गल जाहा। आवगे आ गया पार ब्रह्म की, उठ जासी मोहत चसाहा। अरे मन लेखे चाले लेखे बैसे, लेखे लेंदा साहा। सदा कीर्त कर नानक हर की, उबरे सतगुर चरण उटाहा। आसा महला पंजवा। अपुष्ट बाते पई सिजरी, दूत दुष्ट सजनई। अंधकार मैरतन प्रगासियो, मलीन बुद्ध हशनई। जो कृपा गोबिंद पई, सुख संपत हर नाम फल पाए। सतगुर मिलई रहाओ, मोहे कृपन को कोय ना जानत। सगल पवन प्रगटई, संग बैठनो कही ना पावत। हुन सगल चरण सेवई, आड़ आड़ को फिरत ढूंढते। मन सगल त्रिसन बुझ गई, एक बोल पी खबतो नाही। साध संगत सीत लई, एक जीही गुण कमन मखाने। अगम अगम अगमई, दास दास दास को करियो। जन नानक हर शरणई।

कृपा पाए सहजाए दरसाए अबरातिया गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनों दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवा को बिखमगार तोरै आस प्यास तो

गुण गोविंद गावो, आन दिनो प्रभु त्यावो, भ्रम पीत जीत मिटावो, निद नाम नानक मोरै, आसा महला पंजवा। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम। रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवा। हरख सोग बैराग आनंदी, खेल री दिखायो रहाओ। खिनहू पै निरपै खिनहू, खिनहू उठतायो, खिनहू रस भोगन खिनहू, खिनहू तजायो। खिनहू जोग ताबो पूजा, खिनहू परमायो, खिनहू कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवा, कर सतारवा आसावरी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड नर हां, अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पै री सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां। राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगी री सखी, आसावरी महला पंजवा। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुर चरान हां, तौ मिलिय गुर कृपान मेरे मना। रहाओ टूटे अन प्राण हां, रहो सर्व थान हां, लयो जम भयान हां, पायो पेड़ थान हां। तौ चूकी सगल कान, लैनो जिसम थान हां, पै पावक पार प्राण हां, निज कर तिसै थान हां, हर रस रसै मान हां, लाथी तिस पुखान हां, नानक सहि समायो रे मना। आसावरी महला पंजवा। हर हर हर गुनी हां, जपिया सहि तुनी हां, साधु रसन पनी हां, छूटन बिद सुनी हां, पाइय वडपुनी मेरे मना। रहाओ खोजै जन मुनि हां, सर्व का प्रभ धनी हां, दुलभ कल दुनी हां, दुख बिनासनी हां, प्रपूर्ण आसनी मेरे मना। मन सो सेवीय हां, अलख अपेवीय हां, ता स्यो प्रीत कर हां, बिनस ना जाए मर हां, गुरते जान हां, नानक मन मान्या मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। एका ओट गहो हां, गुर का शब्द कहो हां, आग्या सत सहो हां, मने निदान लहो हां, सुख समाइये मेरे मना। रहाओ जीवत जो मरे हां, दुत्तर सो तरे हां, सब की रेन होए हां, निरपो कहो सोए हां, मिटे अंदेसिया हां, संत उपदेसिया मेरे मना। जिस जन नाम सुख हां, तिस निकट ना कदे दुख हां, जो हर हर जस सुने हां, सबको तिस मन्ने हां, सफल सो आया हां, नानक प्रपाया मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। मिल हर जस गाइय हां, परम पद पाइय हां, वा रस जो बिदे हां, ताको सगर सिद्धे हां, अन दिन जागया हां, नानक वट भाग्या मेरे मना। रहाओ संत भगत होइय हां, दुरमत खोइय हां, दस रेन होए हां, व्यापै दुख ना कोए हां, भगता शरण पर हां, जन्म ना कदे मर हां, अस्त्र से भय हां, हर हर जिन जप लय मेरे मना। साजन मीत तू हां, नाम दृढ़ाए मूह हां, तिस बिन नाहे कोए हां, मने अराध सोए हां, निमख ना विसर हां, तिस बिन क्यों सर हां, गुर को कुर्बान जाओ हां, नानक जपे नाओ मेरे मना। आसावरी महला पंजवा। कारण करन तू हां, अवर न सुजै मूह हां, करै सो होइए हां, सह सुख सोइए हां,
धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ। साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिया हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोय हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोय हां तिसका प्रभु सोए हां अंतरगत बुझे हां सबके सब केशव तिस सुझे हां पतत उधार लेहो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां सुनत संदेसिया हां रहाओ जां स्यों रच रहे हां सब कौ तज गए हां सुपना ज्यों पए हां हर नाम जिन लए हर तज अन लगे हां जन्मे मर भगे हां हर हर जन लहे हां जीवत से रहे हां जिसे कृपाल होए हां नानक भगत सोए। एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला नावा बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दसहू दिस्तावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत नै सुधराम भजन की मानस जन्म्या कारथ खोवत लाजना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कुमत बिना सह तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर आव घट सरवरन आवै बके न बोले हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द करो जलावै गगन निवास समाद लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बिलोवै सुबर सरमर मैलन धोवै जै स्यो राता तै सो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हिव शीतल अग्न बुझावै सेवा सुरत पूज चढ़ावै दर्शन आप सहज कर आवै निर्मल बाणी नाद बजावै ज्ञान अंतर ज्ञान महारस सारा तीर्थ मज्जन गुर विचारा अंतर पूजा थान मुरारा ज्योति ज्योत मिलावन हारा रस रसिया मते कै पाए तख्त निवासी पंच समाए कार कमाई खसमर जाए अवगत नाथ ना लिखिया जाए जल मैं उपजै जल ते दूर जल मैं ज्योतरिया भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर नित गुण गावा देखा दूर अंतर बाहर अवरना को ज्योतिष पावे सोफन होए सुन पारथर नानक कह बिचार निर्मल नाम मेरा आधार आसा महला पहला सब जप सब तप सब जतराई उजड़ पर मैं राहे ना पाई बिन बूजे को थाए ना पाई नाम बिहुने माथे शाई साज धनी जग आए बिनासा छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ जग मोहे बांधा बहुती आसा गुरमति एक पय उदासा अंतर नाम कमल परगासा तिनको नाही जम की त्रासा जग त्रे जित कामन हितकारी पुत्र कलत्र लग नाम विसारी बिरथा जन्म गवाया बाजी हारी सदगुर सेवे करनी सारी बारह मैं कह कहाए अंदरों मुक्त लेप कदे न लाए माया मोह गुरसब जलाए निर्मल नाम सद हृदय त्याए तावत रखै ठाक रहाए सिख संगत कर्म मिलाए गुरबिन पूलो आवै जाए नदर करे संजोग मिलाए
रूड़ो कहो ना कहया जाई, या कथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे साचै नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझै ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखै रखवाला, त्रिभवन सूजै आप गवावै, बाणी बुझै सच समावै, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन मान्या ऐसा सुरत वखान, कथनी बदनी पट पट पार, लेखा संखा लेख अपार, ऐसा साचा तू एको जान, जमन मरना हुक्म पछाण, रहाओ माया मोहे जग बादा जमकाल, बंदा छूटै नाम समाल, गुर सुख दाता अवर ना पाल, हालत पालत निभी तुद नाल, शब्द मरै ता एक लिव लाए, अचर चरै ता परम चुकाए, जीवन मुक्त मन ना मसाए, गुरमुख होए ता सच समाए, जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी थापो थाप, सर्व निरंतर आपे आप, किसे ना पूछै पूछै बख्शे आप, तू पुर सागर माणक हीर, तू निर्मल सच गुणी गहीर, सुख मान पेटे गुरपीर, एको साहेब एक वजीर, जग बंदी मुक्ते हो मारी, जग ज्ञानी विरलाया चारी।

बिन पूजे सगली पत खोवे, कौन मरे कौन रोवे, ओही करण कारण सबसे सिर तो ही रहाओ। मुए कौ रोवे दुख कोए, सो रोवे जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सोए। जीवन मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हम बलिहारी सदगुर चरना, गुर बोहिथो शब्द पै तरना, निरपो आप निरंतर ज्योत, बिन नामे सूतक जगशोत। दुर्मत बिन सै क्या कह रोत, जन मुवे बिन पग सरोत, मुवे कहो सच रोवै मीत, त्रैगुण रोवै नीता नीत। दुख सुख पर हर सहज सोचीत, तन मन सौ पाओ कृष्ण प्रीत। पीतर एक अनेक असंख, कर्म धर्म बहु संख असंख, बिन भय भक्ति जन्म बिरंथ, हर गुण गावे मिल परमारंथ। आप मरे मारे पी आपो, आपो पाए थापो थाप, सृष्टि उपाई ज्योति तू जात, शब्द विचार मिल नहीं प्रात। सूतक अगन पखे जा खाए, सूतक जल थल सभी खाए। नानक सूतक जन्म मरी जय, गुरप्रसादी हर रस पी जय। राग आसा महला पहला, आप विचारे सो परखे हीरा, एक दृष्ट तारे गुरपुरा, गुरमाने मनते मन तीरा। ऐसा सहो सराफी करे, साची नजर एक लिव तरे रहाओ। पूंजी नाम निरंजन सार, निर्मल साजरता पैकार, सिमत सहज कर गुर करतार। आसा मनसा शब्द जलाए, राम नारायण कह कहाए, गुरते वाट महल कर पाए। कंचन काया जोता नूप, त्रिपवन देवा सगल स्वरूप, मैं सोतन पल्लै साचा खूट। पंच तीन नव चार समावे, तारण गगन कल तार रहावे, बाहर जा तो उल्ट परावे। मूर्ख होए न आखी सूजे, जेवा रस नहीं कया बूजे, बेका माता जग सों लूजे। उत्तम संगति उत्तम होवे, गुण कौतावे अवगुण धोवे, बिन गुर सेवे सहज ना होवे। हीरा नाम जिवे हर लाल, मन मोती है तिसका माल, नानक परखै नजर निहाल। आसा महला पहला, गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरमुख मैली मैल पछान, गुरमुख सुरत शब्द निशान। ऐसे प्रेम भक्ति विचारी, गुरमुख साचा नाम मुरारी रहाओ। अहनिस निर्मल थान सुथान, तीन पवन ने केवल ज्ञान। साचे गुरते हुक्म पछान, साचा हरख नाही ते सोग, अमृत ज्ञान मारस भोग। पंच समाई सुखी सब लोग, सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ बिछोड़े सोई, आपे करता करे सोई। टाहे ओ सारा हुक्म समावे, हुक्मे वरतै ज्योत इस पावे, गुर बिन पूरा कोई ना पावे। बालक बिरदना सुरत प्राण, पर जोगन बूढ़ा अभमान, बिन नाम है क्या लैस निदान। जिसका अंतन सहज न जाना, परम पुलाना फिर पछताना। गल फाही बौरा बौराना, बूढ़त जग देखिया तो डर भागे, सतगुर राखे सेवड भागे, नानक गुर की चरणी लागे। आसा महला पहला, गावे गीते चीता नीते, राग सुनाए कहावे बीते, बिना मैं मन झूठा नीते। कहां चलो मन रहो करे, गुरमुख राम नाम तृप्ता से, खोइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा, लाभ लोग अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाण, अंतर की गत गुरमुख जाने, साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे, अगल कला सा साई टकावे, सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले ते जाओ, गुर प्रसादी कर्म कमाओ, नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता, अंदर बाणी ना मेरा ता, मेरा प्रभ लाए ता को लागे, हो मैं मारे सब दे जागे, एथे उथे सदा सुखिया गए। मन चंचल बिद नाही जाने, मन मुख मैला शब्द ना पछाणे, गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास, साधु जन संगत होए निवास,

ओहो ना सुनई कत ही तुम लोग सुनावो। जिसते सुता नानका जागाए सोई, जे कर बुझे अपना ता नींद ना होई। जे चलदा लै चलिया के संपै नाले, ता तन संचो देख के बुझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो, मत पछो तावो। औगुण छोड़ो गुण करहो, ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर, वैसी किरस कमावो। तावा पारी जानियो लाह लै जावो। कर्म होवै सतगुर मिलै बूझै बिचारा, नाम वखाणे सुने नाम नामे ब्योहारा। ज्यो लाह तोटा तिवै वाड़ चलदी आई, ज्योत पावै नानका साई वड़ियाई। आसा महला पहला। चारे कुंडा टूंडियां को निमी मेंडा, जे तुद पावै साहेबा तू मैं हो तेंडा। दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम, हेको मेंडा तू तनी साचा मुख नाम। रहाओ सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, मांगै रिद्ध सिद्ध। मैं एक नाम न विसरै साचे गुरबुद्ध। जोगी पोगी कपड़ी क्या पवै दसंतर, गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी नित पड़े पुराणा, अंतर वसना जाननी कड़ ब्रह्म लुकाना। एक तप सी बन में तप करे, नित तीर्थ वासा। आप नाची नै तामसी कहे पय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे, बिन गुर शब्द ना छूट ही परम आवै जावै। एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे, नामदान इसनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए सो जाए सजाण, नानक नाम न विसरै साचे मन मानै। आसा महला पहला। मनसा मने समाए ले, पहो जल सज तरना। या जुगा दयाल तू ठाकर तेरी सरना। तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दी जाए। गुरमुख नाम ते आई है मन मंदिर पीजै। रहाओ कूड़ा लालच छोड़ी तो साच पछाणे, गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाने। एहो मन राजा लोभिया लुभतो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारी हर सिंह बने आई। कलर खेती बीजिए क्यों लाहा पावै, मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गड़ावै। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख पारी, साचो साहिब मन वसै हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे पाई, अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई। मन मुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका, जल मैं केता राखी है अब अंतर सूका। हर का नाम निदान है पूरे गुरदिया, नानक नाम ना विसरै मथे अमृत पिया। आसा महला पहला। चले चरण हार वाट वटाया, तंद पिटे संसार सच ना पाया। क्या पवी है क्या ढूंढी है, गुर शब्द दिखाया। ममता मोह विसरजे अपने कर आया। रहाओ सच मिले सचियार कू ना पाई है, सचे सोच तलाए बहु ना आई है। मोया कहो क्या रोवो, रोए ना जान हूं। रोवो सच सलाए हुक्म पछाण हूं, हुक्मी वजो लिखाए आया जानिए। लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणिए, हुक्मी पैंदा जाए दरगह पाणिए। हुक्मे ही सरवार बंदर बाणिए, लाहा सच न्याओ मन वसाइए। लिखिया पल्ले पाए गर्व न्याइए, मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए। ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए, साहेब हृदय वसाए न पछोता वही। गुनहा बख्शन हार शब्द कमा वही। नानक मंगै सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवर ना कोए नजर निहाली है। आसा महला पहला। क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरी आवला। सच टिके कर आए शब्दो तावला। जै देखा तै सोए अवर ना जानिए, गुर की कार कमाए महल पछाणिए। रहाओ आप मिलावै सच ता मन भावई, चलै सदर जाए अंक समावई। सच्चा साहिब मन वसै,
ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ ਅਬੇ ਤਬੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਉਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਪੱਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੇ ਚੜੈ ਪਰ ਨਾਲ ਬੁਡਾਵੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੀਐ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਲੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਖੀਐ ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਕੀਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਥੀਆ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਫੁਰਮਾਈ ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲੈ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਸੋ ਧਣੀ ਦਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਨੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ ਮੂਲ ਛੋੜ ਡਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵੈ ਸ਼ਾਈ

पूरी मत भाई, आद जुगाद निरंजना जन हर शरणाई। साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। गुरबिन किने ना पायो, केती कह कहाए आप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगदरड़ाए। मानमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए, बिन हर नाम ना छूटसी मर नरक समाए। जन्म मरे प्रमाई है हर नाम ना लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे। करनी सेव कराई है करनी पीसाई, आप करे किसे आखिए वेखे वड़ियाई। गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए। नानक सिर दे छुटिया दरगे, पत पाए आसा महला पहला। रूड़ो ठाकर महरो रूड़ी गुरबाणी, वड्डे पाग सतगुर मिले पाइये पग निर्बाणी। मैं ओ लगिया ओ लगी हम शोरू थारे, जो तू राखे त्यों रहा मुख नाम हमारे। रहाओ दर्शन की प्यासा कणी, पाणे मन पाईए मेरे ठाकर हाथ वड्याईया। पाणे पत पाईए साचो दूर ना जानिए, अंतर है सोई जै देखा तैं रव रहे किन कीमत होई। आप करे आपे हरे वेखे वड्याई, गुरमुख होए निहाली है इं कीमत पाई। जीवंदियां लाह मिले गुरकार कमावे, पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावे। मनमुख तोटा नित है परमै परमाए, मनमुखियां दे ना चेताई क्यों दर्शन पाए। तां जग आया जानिए लाच साचे लिव लावे, तां जग आया जानिए साचे लिव लाए। गुर पेटे पारस पए ज्योति ज्योत मिलाए। अहनिस रहे निराल मो कार तुर की करनी, नानक नाम संतोखिया राते हर चरणी। आसा महला पहला, केता अखने आखिए ताके अंत ना जाना। मैं नितरिया तर एक तू मैं तान सताना। नानक की अरदास है सच नाम सुहेला, आप गया सोजी पई गुर शब्दी मेला। रहाओ हाँ मैं गर्व गवाई है पाईए विचार, साहब से मन मान्या दे साचा धार। अहनिस नाम संतोखिया सेवा सच साई, ता कहो बिघन ना ला गई। चल हुक्मर जाई हुक्मर जाई, जो चले सो पवे खजाने। खोटे ठवर ना पाए नी रले जूठा ने। नित नित खरा संभालिए सच सबदा पाईए, खोटे नजर नयावनी ले अगन जलाईए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फले अमृत होई। अमृत फल जिनी चाखिया सच रहया गाई, तिन्ना परम ना भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदा रजाई, अवगुण यारे कौ गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा महला पहला, मन रातो हर नाए सच वखाणिया। लोकां दा क्या जाए जत दुपाणिया, जो लग जियो प्राण सच ते आईए। लाह हर गुण गाए मिले सुख पाईए। रहाओ सच्ची तेरी कार दे दयाल तू, हौ जीवा तुद सा लाहे मैं टेकया धार। तू दर सेवक दरवान दर तू जानही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही। दरगह ना महदूर गुरमुख जानसी, वेला सच प्रवान शब्द पछाण सी। सत संतोख कर पाओ तोसा हर नाम से, मनो छोड़ विकार सच्चा सच दे। सच्चे सच्चा

दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। तदै तार कला जन छोड़ी, हर चीजी जन रंग किया, तिसदा दिया सब नी लिया, कर्मी कर्मी हुकुम पया। नन्ने नाहा भोग नित भोगे, ना डीठा ना संभलिया, गली हो सो हगण भैने, कंत न कबहू मैं मिलिया। पप्पै पातशाहो परमेसर, वेखण कहो परपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रव रहया। फफै फाही सब जग फासा, जमकै संगल बंद लया, गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। बब्बै बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा ढालन आप लगा। पब्बै पालै ऐसे फल पावै, गुर प्रसादी जिन को पौ पया। मन मुख फिरै ना चेतै मुड़े, लख चौरासी फेर पया। मम्मै मोह मरण मधुसूदन, मरण पया तब चेतव्या। काया पीतर यवरो पड़िया, मम्मा अखर विसरिया। यइये जन्म ना होवी कदी, जेकर सच पछाणे। गुरमुख आखै गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जाणै। आरारै रव रहया सब यंत्र, जेते किए जनता। जंतो पाए तंदै सब लाए, कर्म होवा तिन नाम लया। लल्लै लाए तंदै जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना समकर सहना, पाणै ताकै हुकम पया। ववै वासदेव परमेश्वर, वेखण कहो जिन वेस किया, वेखै चाखै सबके जाणै, अंतर बाहर रव रहया। अड़ाड़ै राड़ करै क्या प्राणी, तुसै त्यावो जे अमर होवा, तिसै त्यावो सच समावो, ओ सिविटों कुर्बान किया। हा है होर ना कोई दाता, जियो पाए जिन रिजक दिया। हर नाम ते आवो हर नाम समावो, अंदिन लाहा हर नाम लिया। आयड़ै आप करे जिन छोड़ी, जो किश करना सो कर रहया। करे कराए सबके जाणै, नानक सायर इव कहया। राग आसा महला तीजा पट्टी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो अंगे सब जग आया, काखे कंगे काल पाया, रीरी लली पाप कमाणे, पढ़ अवगण गुण विसरिया। मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रया रहाओ। सिद्धं आया सिमरै नाही, नन्ने ना तुद नाम लया। छजै चीजै इन समूड़े, क्यों छूटे जम पाकड़िया। बब्बै बूझै नाही मूड़े, भरम पुले तेरा जन्म गया। अणहोंदा ना उतरायो पादा, अवरी का पार तुद लया। जज्जै जोत हर लई तेरी मूड़े, अंत गया पछतावेंगा। एक शब्द तू चीने नाही, फिर जूनी आवेंगा। तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित, अवरानो ना सिखाल बिखिया। पहला फाहा पया पांदे, पिछों दे गल चटड़िया। ससै संजम गयो मूड़े, एक दान तुद कुथाए लया। साई पुत्री जजमान की, सा तेरी एत तान खादे, तेरा जन्म गया। मम्मै मत हिर लई तेरी मूड़े, हमें वड्डा रोग पया। अंतर आत्मै ब्रह्म न चीनिया, माया का मोहताज पया। ककै काम क्रोध परम्यो मूड़े, ममता लागे तू धर विसरिया। पड़ै गुणै तू बहुत पुकारै, विण बूझे तू डूमुआ। तत्तै तामस जल्यो मूड़े, थत्थै थान प्रहट होवा। कगै घर घर फिरै तू मूड़े, ददै दाना तुद लया। पप्पै पार न पवही मूड़े, पर पई तू पलच रहया। सच्चा आप खुआयो मूड़े, एहो सिर तेरै लेख।

हर नाम रहसे प्रव्याप कृपा तहरिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल नित प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जनता गे आसा महला पंजवां उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मुहलत पुनड़िया कित कूल लुवाया।

नानक जिन करतै कारण किया सो जाणै करतार। पौड़ी बिन सतगुर कहना ना पायो, बिन सतगुर कहना ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नूं कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हों विच आया हों विच गया, हों विच जमया हों विच मुआ, हों विच दिता हों विच लया, हों विच खटिया हों विच गया। हों विच सत्यार कूड़ियार, हों विच पापुन विचार, हों विच नरक सुरग अवतार। हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरीऐ हों विच धोवै, हों विच जाति जन सीखोवै। हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मोख मूत की सार ना जाना। हों विच माया हों विच छाया, हों मैं कर कर जन तो पाया। हों मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करै गावावै मंगै मुख द्वार, जति सदावै जुगत न जानै छड बह करवार, सबको पूरा आपे होवै घट न कोई आखै, पत परवाना पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापै, महला पहला वदी सवजग नानका सच्चा वेखै सोए, सबनी छाला मारियां करता करे सो होए, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लेखै पत पवै चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया, एना जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जग तो पाया, एक नानू तू मेल लै एक आपो तुद खवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया, सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पाया, जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही, जा हूं करी ना होई, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया, रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला पर पूर रहया, तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बातां, जो किश करना सो कर रहया, महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ, नानक ताका दास है सुई निरंजन दे ओ, महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे ओ, नानक ताका दास है सोई निरंजन दे ओ, महला पहला कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधना मारी है, जिहा कहले कहलना ते वेहो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेडी है जित दरगे गया हारी है, पढ़िया अत ओमिया विचार अगै विचारी है, मोहे चले सो अगै मारी है। सलोक महला पहला, नानक मेरे शरीर का एक रथ वाह हो, जो जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझै ताहे, सत जोग रथ संतोख का धर्म अगै रथवा हो, तेरे तै रथ जतै का जोर अगै रथवा हो, द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवा हो, कल युग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो, महला पहला साम कह से तंबर स्वामी सच में अच्छे साच रह सबको।

देखो को निर्जास वस्तु अंदर वस समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगास।

नानक सेवक कांडिया जे सेती खसम समाए पौड़ी नानके अंत न जापनी हर ताके पारा वार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हों कैस्यों करी पुकार नानक करना जिन किया।

सहज सहज गुण गवै कबीरा आसा। हज हमारी गोमती तीर जहां बसै पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन कौ पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। भूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है दे ओ रहाओ। ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर दे ओ। तीन देव प्रतख तोरै, करै किसकी से ओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गण नहारे खाओ। पात पहत यार लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय आसा। बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कष्ट अपना कियो। तीस बरस कष्ट देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ वार करै। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरै। चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीरे आसार बह। जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करै। हर जियो कृपा करै लिव लावै, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुऐ लै ना गयो। आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। अहे रखवाद ना कीजै रे मन, सो किरत कर कर।

आओ बजाम नहारो कहां गयो जने हो मंदर कीना साकी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पाए संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत धर रमते मृतक पय दसै बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है सागत स्यो भूल नहीं कहिया रहाओ कौआ कहां कपूर चराए कह बिसियर कौ दूध पी आए सत संगत मिल बिबेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई सागत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीम सिंचाई कहत कबीर ओआ को सहज ना जाई आसा लंका सा कोट समुंद सी खाई तेह रावण कर खबर ना पाई क्या मांगो कि थिर ना रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई रहाओ एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया ना बाती चंद सूरज जाके तप्तर सोई बैसंतर जाके कपड़े धोई गुरमत रामै नाम बसाई आश्चर्य रह ना कथू जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त ना होई आसा पहला पूत पिछैरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंबा सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा लै गई बिलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार पैस चरावन जाई बाहर बैल गोन करे आई कहत कबीर जो इस पद बूजै राम रमत ते सबके सूजै बाईस चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जियो के ते पदे अठ दो तुके सत एक तुका एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उधर राखिया बहुर लागी माया प्राणी काहे का लोभ लागे रतन जन्म खोया पूर्व जन्म कर्म भूम बीज नाही बोया रहाओ बारक ते बिरद पया होना सो होया जा जम आए चोट पकड़ै तबे काहे रोया जीवने किया।

कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पायो अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए कोट ते तीस हो जाना, कह कबीर मोए ब्याह चले है पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डराओ रे सखी सहेली ननद गहेली, देवर कै ब्रह जराओ रे। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे ओ, किन बिद रहन रहो रे। सेजै रम तो नैन नहीं पेखो, एहो दुख का सो कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लड़ाई, माया सदमतवारी, बड़े भाई कै जब संग होती तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधया, मैं राम रमत सुख पाया। आसा हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जने उत मारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। मेरी जेहबा बिसन नैन।

हम गोरु तुम ग्वार गोसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे पूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा, सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हरलीन, रहाओ नैन देख पतंग उर्जै, पास ना देख आग, काल फासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहुतेरे, अब

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे, अल्लाओ स्वादत जी संगार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे को चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्मया लेख रहाओ। साज कते बखान अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुणे नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई। अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

की एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र बिमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया। सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी। घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा आनंद करे सदकेला रहाओ।

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यो बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कारे काम हम हर लाए, सो हम करे जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता कर इसका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़ै उड़िया वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइए। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करे खटकर्मा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरे हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावे, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो मन ते हर हर, साध संगत मैं पाया। माई खाट आयो घर पूता, हर तन चलते हर तन बैसै। हर तन जागत सूता रहाओ, हर तन इशनान हर तन ज्ञान। हर संग लाए ध्याना, हर तन तुलहा हर तन बेड़ी। हर हर तार प्राणा, हर तन मेरी चिंत विसारी। हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नमृत पाई। हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो तोट न आवै। हलत पलत कै संगे, लाद खजाना गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगे, गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किले विख नासै, पितरी होए उधारो। सो हर हर तुम सधी जापो, जा कांत न पारो। पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ तुम कहो हर हर। सदा भजहो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम कहो होए दयाला। संत संग

हर सिमरत अनदयानंता, रंग तमासा पूर्ण आसा, कबह ना व्यापै चिंता। भवर तुम्हारा इहो मन होवो, हर चरणा होहो कौला। नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंदे चात्रक मौला। गुजरी महला पंजवा, मता करै पछम कै ताई, पूर्व ही ले जात। खिन मैं था पो था पनहारा, अपन हाथ मतात। स्यानपो काहू कामनायात, जो अनरूपयो ठाकर मेरा, होय रही हो बात। रहाओ देश कमावनो तन जोरन की, मनसा बीचे निकसे सास। लस्कर नेव खवास सब त्यागे, जंपर उठ सिदास। होया नान मन हठ की दृढ़ता, आपस कौ जा नात। जो अनिंद निंद कर छोड़ियो, सोई फिर खात। सह सुभाए पय कृपाला, ते जन की काटी फास। कहो नानक गुर पूरा भेटिया, प्रवान ग्रस्त उदास। गुजरी महला पंजवा, नाम निधान जिन जन जपयो, तिनके बंधन काटे। काम क्रोध माया बिख ममता, ए ब्याह ते हटे। हर जस साध संग मिल गायो, गुर प्रसाद पयो मन निर्मल। सर्व सुखा सुख पायो, रहाओ जो किश कियो, सोई पल मान। ऐसी भगत कमानी, मित्र सत्र सब एक समाने। जो जुगत निशानी, पूर्ण पूर रहो सर्व थाई। आन नकत हूं जाता, घट घट अंतर सर्व निरंतर। रंग रवयो रंग राता, पय कृपाल दयाल गोपाला। ता निरपय कह कर आया, काल क्लेश मिटे खन भीतर। नानक सहि समाया, गुजरी महला पंजवा। जिस मानुख पै करो बेनती, सो अपने दुख भरिया। पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है। तित मान महत जस घटै, रहाओ माया के संबंध सैन साक। कित ही काम ना आया, हर का दास नीच कुल उच्चा। ते संगमन वाइंत फल पाया, लाख कोट बिखिया के बिंजन। ता मैं तृष्ण ना बूझी, सिमरत नाम कोट उजियारा। बस्ता गोचर सूजी, फिरत फिरत तुमरे द्वार आया। पै पंजन हर राया, साध के चरण तूर जन बांछ। सुख नानक हो पाया, गुजरी महला पंजवा। पंच पदा कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। प्रथमे गर्भ माता कै वासा, ऊहा छोड़ तरन मैं आया। चित्र साल सुंदर बाग मंदर, संग न कछ हूं जाया। अवर सब मिथ्या लोभ लभी, गुर पूरे दियो हर नामा। जी को एहा वस्त फबी, रहाओ इष्टमीत बंद पसुत पाई। संग बंता रच हसया, जब अंति अवसर आए बनयो है। उन पेखत ही काल ग्रसया, कर कर अनर्थ बिहाजी संपै। सोना रूपा दामा, पहाड़ी को ओह पहाड़ा मिलया। होर सगल पयो बेराना, हैवर गैवर रथ संभाहे। गहो कर कीने मेरे, जब ते होई लामी ताई। चले नाही एक पैरे, नाम तहन नाम सुख राजा। नाम कुटम सहाई, नाम संपत गुरु नानक कौ दी। ओह मरे ना आवै जाई, गुजरी महला पंजवा। ते पदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। दुख बिन से सुख किया निवासा, तृष्णा जलन बुझाई। नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया, बिनसना आवै जाई। हर जप माया बंधन टूटे, पहे कृपाल दयाल प्रभ मेरे। साध संगत मिल छूटे, रहाओ आठ पहर
ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮਾਤਾ। ਹਰ ਸੋਗ ਦੋਹ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਲਾ, ਕਰਨੈ ਹਰ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਗਲ ਜੁਗਤ ਬਣ ਆਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲਾ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੋ ਪਦੇ ਕਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਤਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੀਏ ਕਰ ਆਪਣੇ, ਸਗਲ ਕਰਤ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਨਾਹੀ, ਬਾਛੈ ਚਰਨ ਰਵਾਰੋ। ਠਾਕੁਰ ਐਸੋ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਤਣੀ ਕਹੀਜੈ, ਜਨ ਕੋ ਅੰਗ ਨਿਰਾਰੋ ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਬੁੱਧ ਪਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰੋ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਰੋ, ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਮਿਆਰੋ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੂਜਨ ਹਾਰੋ। ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਪਤਾ, ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਅਰ ਸਗਨ ਮੋਹਨ ਜਨ, ਗਹਿ ਨਾ ਸਕਾਹੇ ਗਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਕਥਾ, ਸੁਨਿਆ ਅਵਰ ਅਵਰ ਬਿਦ, ਬੁੱਚੀਐ ਬਕਨ ਕਥਨ ਰਹਿਤਾ ਰਹਾਓ। ਆਪੇ ਭਗਤਾ ਆਪ ਸਵਾਮੀ, ਆਪਣ ਸੰਗਰਤਾ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋਇ, ਪੇਖਿਓ ਜਤਰ ਕਥਾ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ, ਜਨ ਕਉ ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਹਿ ਜਹਿ ਅਵਸਰ ਆਏ ਬਣਿਓ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਹਰ ਤਿਆਇਓ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਗਤ ਵਛਲ ਬਿਰਦਾਇਓ, ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬਾਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਜਨ ਕਉ ਲਾਡ ਲੜਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਇਓ। ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਕੀ, ਆਪੈ ਦਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤੀਆਂ ਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ। ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਭਾਵਨੀ ਲਾਈਐ, ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਹਰ ਠੀਲਾ। ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਰੰਗੀਲਾ, ਬਾਸ ਰਹੋ ਹੀਰੈ ਕੈ ਸੰਗੈ, ਪੇਖ ਮੋਹਿਓ ਮਨ ਲੀਲਾ ਰਹਾਓ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਉਤਰੈ ਮਨੋਹ ਜੰਗੀਲਾ। ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕਾਉ, ਨਾਨਕ ਪਰੈ ਪਰੀਲਾ। ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੁਨ ਜੋਗੀ ਸ਼ਾਸਤਰਕ ਕਹਾਵਤ, ਸਭ ਕੀਨੇ ਬਸ ਆਪਣੀ। ਤੀਨ ਦੇਵ ਅਰ ਕੋੜ ਤੇ ਤੀਸਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਹੈਰਤ ਕਛ ਨਾ ਰਹੀ।

मिलवर नारी मंगल गाया, ठाकर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिन सबका किया उधार। गुजरी महल्ला पंजवा, मात पिता भाई सुत बंधप। तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे। किछ साथ ना चल पोरा, ठाकरो तुझ बिन आहे ना मोरा। मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आहयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्श पायो, बिन सो सगल ने होरा। गुजरी महला पंजवा, आल जाल प्रम होत जावै। प्रभ से तीरंग लाई, मन को एह उपदेश दरड़ावै। सहज सहज गुण गाई, साजन ऐसो संत सहाई। जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसरना कब हूं जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति, नीकी ए ठहराई। मिल साधु हर जस गावै, नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा, खिन मैं थापो था पनहारा। कीमत जाय ना करी, राजा रंक करै खिन पीतर। नीचे जो तरी, त्याई है अपनो सदा हरी। सो जन देसा ताका कहां करिए, जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर, मन सरन तुम्हारे परी। अचेत याने बारक नानक, हम तुमरा खोतार करी। गुजरी महला पंजवा, तू दाता जिया सबना का। बसो मेरे मन माही, चरण कमल रिदमाए।

सास सास तेरा नाम सुमारा तुम ही को प्रव्याही नानक टेक पई करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्स दीजै जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पग चारो एह मनोरथ मोर ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर चित चित वो हर रस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए साध संगत को जोहे ना सके मल मल धोवे तो पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए गुहज पाव को बहुत पर जा रे मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए जन नानक अंग किया प्रभ करता जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवे जग कीर्त उंदर गै बैसन पाई है जमकी त्रास नास होए खिन मैं सुख अंध सेती कर जाई है। जा ते काल न बिरथी जाई है आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मंत्र सदा त्याई है रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देह सोई प्रभ पाई है चरण कमल नानक रंग राते हर दास है पैज रखाई है। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जियन को दाता भगत परे भंडार जाकी सेवा निफल ना होवत खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज सगल जी जा को वारा दै ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखै तिस कहा करे संसार। गुजरी महला पंजवा जन की पै सवारी आप हर हर नाम दियो गुरे अवखद उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेसर अपनी कृपा धार मिटी ब्याद सर्व सुख होए हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करता गुरपूरे।

रहाओ। मात पिता सुत मीत भाई तिस बना नहीं कोए, ईत ऊत जी नाल संगी सर्व रव्या सोए। कोट जतने उपाव मिथ्या कछ न आवै काम, सरण साधु निर्मला गत होए प्रभ कह नाम। आगम दयाल प्रभु ऊचा सरण साधु जोग, तिस प्राप्त नानका जिस लिखिया तुर संजोग। गुजरी महला पंजवा आपना गुर सेव सदी रमह गुण गोबिंद, सास सास आराध हर हर लह जाए मन की चिंद। मेरे मन जाप प्रभ का नाओ, सुख सहज आनंद पावे मिली निर्मल थाओ रहाओ। साध संग उधार एहो मानो, आठ पहरे आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगले उपाद। अटाला शेदा भेद स्वामी सरण ता की आओ, चरण कमल आराध हृदय एक सिउ लिव लाओ। पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्श लीने आप, सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप। गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया, गई संका टूट दुखा नेरा।

जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे पहे पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कब हूं ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगंत सदा अकथ। दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर सरण। गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करण कारण योग। मन तन बांछिया जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ। आदि अंते मध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमण काटी है जमजाल। काम क्रोध लो मो मूठे सदा आवा गवन प्रभ प्रेम भगत गोपाल सिमरन। मिटत जोनी पवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख निवारे मिले हर जन संत। सर्ब बिद भ्रम ते पुकारे कते नाही छोट हर चरण सरण अपार प्रभ के दृढ़ गही नानके ओट। गुजरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आराध श्री धर सफल मूर्त करण कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरण अरबिंद उपास काल कलेश मिटंत सिमरन काड जम दूत फास रहाओ। सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुवाओ। गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे पै परम।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हम मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटा, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया, महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेखै, दिखा किनै केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाई है, जा कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा, श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मनमुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाए दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए, महला तीजा, एहो मन के तड़िया, जुग भरमिया, थिर रह ना आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेलियो पाए, जां हर बख्से ता गुर मिले, अस्थिर रह समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरै ना जाए, पौड़ी काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, जो तिस पावै सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी, श्लोक महला तीजा, वाहो वाहो आपा खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाहो वाहो सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह बाणी सच है, सच मिला वाहोए, नानक वाह वाह करत्या प्रपाया, करम प्राप्त होए, महला तीजा, वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्रमिलया आई, वड भागिया वाह वाह मोह हो कढ़ाई, वाह वाह करै सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाह वाह करम प्राप्त होवै, नानक दर सच्चै सोभा पाई, पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभिमानी, परम पूले नदर नायावनी, मनमुख अंध ज्ञानी, उपाय कतन लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खोलाई अनु हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी, श्लोक महला तीजा, वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाह करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए, वाह वाह करत्या हर स्यों लिवलाए, वाह वाह करमी बोलै बोलाए, वाह वाह करत्या शोभा पाए, नानक वाह वाह सत्र जाए, महला तीजा, वाह वाह बाणी सच है,

आप दया कर दे नानक वाह वाह गुरमुख पाई है अंधन नाम लाए महला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई दूजी नाही जाए जे बहु तेरा लोची है विण कर मैं ना पाया जाए जिन्ना अंतर लो विकार है दूजे पाए खुवाए जमन मरण ना चुकई हमें विच दुख पाए जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सहाहे नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समाहे पौड़ी ढाडी तिसनो वाखी जे खसमै तरे प्यार दर खड़ा सेवा करे गुरसबदी विचार ढाडी दर कर पाए सी सच रखे उरतार ढाडी का महल अगला हर कह नाए प्यार ढाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार श्लोक महला तीजा गुजरी जात गवार जा सहो पाए अपना गुर कै शब्द विचार अंधन हर जप जापना जे सतगुर मिलै तिस पहो पवै सा कुलवंती नार सा हुकुम पछाणै कंत का जिसनो कृपा कीती करतार ओहो कुचजी कुलखणी पर हर छोडी पतार पै पै मल कटियै निर्मल होवै शरीर अंतर प्रगास मातूतम होवै हर जप गुणी गहीर पै विच बैसै पै रहै पै विच कमावै कार ऐथे सुख वडियाईया दरगै मोख द्वार पै ते निरपौ पाईऐ मिल ज्योति ज्योति अपार नानक खसमै पावै सा पली जिसनो वापे बख्शे करतार महला तीजा सदा सदा सालाही है सच्चे को बल जाओ नानक एक छोड़ दूजे लगे सा जेवा जल जाओ पौड़ी अंसा अवतार उपायोन पाओ दूजा किया जो राजे राज कमाव दे दुख सुख पीड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लिया निरपौ निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटिया तिथे सोग विजोग ना व्या पई अस्त्र जगथिया श्लोक महला तीजा एहो सब किसे आवण जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सोह प्रवाण नानक जे को आप गणाएदा।

तेरा रंग रतिया, ना होवी पछोताओ तुदनो जपतिया, पहुंच ना सके कोए तेरी टेक जन। गुर पूरे वाहो वाहो सुख लहा चितार मन, गुर पै सिफत भंडार करमी पाई है, सतगुर नदर निहाल बहु ना ताई है, रखै आप दयाल कर दासा अपने, हर हर हर हर नाम जीवा सुन सने। सलोक महला पंजवा, प्रेम पटोला तैं सह दिता टक्कण।

तुरे बिसम भय बिसमाद देह कुदर तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हथ निदान पावे तिस देहे जिसन होए दयालु हर नाम से लेहे आगम्या गोचर बेअंत अंत ना पाई है जिसनो होहे कृपाल सो नाम त्याई है। सरुक महला पंजवा कड़शिया फिरन स्वाव न जान सुनिया सेई मुख दिसानो नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तै सह दित्ती वाड़ नानक खेतना छिजई पौड़ी आराध्य हो सच्चा सोए सब केशो जिस पास दुहां सरिया खसम आप खिन मैं करे रास त्यागो सगलियो पाप तिसकी ओट गहो पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिया अमृत ना।

कड़ी मोहतन है विसरा नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीर वरियाम किन ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जिन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किन ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवां किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटे।

कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ। नानक अन दिन बिलपते ज्यों सुन्या कर काओ पौड़ी। सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच्छ पुन्नी मन आस गए विसूरिया। पाया नाम निदान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा। सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहा मर। साहेब एवक साहेब सेवक एक एक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया। सुध राग गुजरी भगतां की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री कबीर जीओ का चौपदा कर दूजा दूजा। चार पाव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बिराने हुई है फाटे नकन टूटे कांधन। कोदव को पुसखई है रहाओ सारो दिन डोलत बन महिया। अजहो ना पेट अगई है जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम्बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई, भरम भुलाई जिस तू देवै सह बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हो पूजो दूजा नजर न आई। एकै पाथर की जय पाओ, दूजै पाथर धरियै पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कह नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बुझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश पंखी अलो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजे मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनतीने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरै थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करै तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलोच

काहे भया सन्यासी भरमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं कीन्या परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम सान की पसम लगाई गुरबिन तत ना पाया। काय जपोरे काय तपोरे काय बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडलो कापड़ियारे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर।

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै। अंत काल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वां केरदा बसै। गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनोपमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं। रहाओ इच्छस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार सरणं। हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं। जय देव आयो तस सफटं पवभूत सर्वगतं। एक ओवंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद। राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे। रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे। जन नानक के प्रभु

कित गली हर के संत बतावो मार्गो हम पीछे लाल चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है भली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर ढोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा भली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हरे अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पै हार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार रहाओ लोकन की चतराई।

अज्ञान अंधेरा संति काटिया जी दान गुर देनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी कर्म धर्म किश उपजना आयो नहीं उपजी निर्मल करनी छाड़ सियाण संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंधारी पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के फाहा रहाओ खोजत खोजत खोज बिचारियो हर संत जना पाया तिना प्राप्त हो निदाना जिनके कर्म लिखा सेवड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम विसाहा देवगंधारी पंजवा मन कह अंकार अफारा दुर्गंध पवित्र अपावन पीतर जोधी सह सो शारा रहाओ जिन किया ते सिमर प्राणी जियो प्राण जन तारा तिसै त्याग अवर लपटावै मरजन मैं मूद गवारा अंध कुंग गुंग पिंगल मतहीना प्रभ राखो रखनहारा करन करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी पंजवा सो प्रभ नेरै हूं ते नेरै सिमरत आए गाए गुण गोबिंद दिन रैन साई सवेरै रहाओ उधर देह दुलभ साधु संग हर हर नाम जपेरै करी ना मोहत ना चसा बिलंबो काल नितै नित हेरै अंध बिलाते काडो करते क्या नाही करते रह नाम आधार दीजै नानक कहो आनंद सुख घनेरै शके दो देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम आराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल बाध्यो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया फादेओ पाओ भगत गाए गुण गोविंद जमका मार्ग साध्यो पयो अनुग्रहो मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला देओ बलिहारै नानक लख बेरा मेरे ठाकर अगम्यागा देओ देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावै सफल आया जीवन फल तां को पार ब्रह्म लिबलावै रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता जो साधु संग पावै नाम उचार करे हर रसना बहुन न जो नीत आवै पूर्ण ब्रह्म रव्या मंतन मह आना दृष्टि आवै नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावै देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही उर जायो इतनी ना बूझै कबहू चलना बिगल पयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया बिखिया एक यो पायो लोभ सुने मन सो कर माने बेग तहा उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देव गंधारी पंजवा सर्व सुखा गुरचरना कालमल डारन मन सुधारन ए आसर मोए तरना रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन एह टहल मोहे करना बिकसै मन होवै परगासा बहुर ना गर्भै परना सफल मूर्त परसौ संतन की एह त्याना तरना पयो कृपाल ठाकर नानक परयो साध की सरना देव गंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कही है चार पदार्थ अनंद मंगल निध सुख सहज सिद्ध लही है रहाओ
मान त्यागो हर चरणी लागो तिस प्रभ अंचल गहिया आंच ना लागे अग्न सागर ते शरण स्वामी की अहिया कोट प्राद महा अकिर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है करना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक ते शरण ही है।

जन्म जन्म के किल बिखनास कोट मजन इशनाना नाम निधान गावत गुण गोविंद लागो सहित्याना कर कृपा अपना दास कीनो बंधन तोर निरारे जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे शके तेनो देवगंधारी महला पंजवां।

साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर्मानो मन में असुख धारो गुण गावे ठाकर अविनाशी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए और तारो देवगदारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान धारदर रैनी जी प्रांते प्यारा रहाओ शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा दीनानाथ प्राण पथ पूर्ण पावजल उदर नहारा आदि जुगाद भगत जन सेवक ताकि बिखै आधारा तिन जन की धूर बांछै नित नानक।

प्रेम रसाने जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधो बोझो नी परमाई है टिकट ना पावे बिन सतसंगत किस आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला।

आओ दोएकर जोड़ करी बेनंती पार ब्राह्मण त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवगंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख भंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया पारे उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर तरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे सरने आयो राख नहारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ सादर सारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे देव गंधारी महला पंजवा प्रभ

लागो जन चरणी निस्बासर दर्स पावा, तन मन अर्प करो जन सेवा, रसना हर गुण गाव। सास सास सिमरो प्रभ अपना, संत संग नित रहिया, एक आधार नाम तन मोरा, अनद नानक एहो लइया। राग देव गंधारी महला पंजवा, घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए, छोड़ ना जाई सधी संगे, अंदन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्व सुखैना, त्याग न कत हूं जाए, अनक अनक भांत बहु पेखे, प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग सोब द्वार है, अनहद रोण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माने, गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा, दर्शन नाम कौ मन आचे, भ्रम आयो है सगल थान रे, आहे पर्यो संत पाछ रहाओ। किस हों सेवी किस आराधी, जो दिष्ट सो गाछ, साध संगत की सरणी परिय, चरण रेन मन बांछ। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई, महादुत्र माया छ, आए पयो नानक गुर चरणी, तो उतरी सगल दुराछ। देव गंधारी पंजवा, अमृता प्रे बचन तुहारे, अत सुंदर मन मोहन प्यारे, सब हूं मद निरारे रहाओ। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे, ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा, मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर, शरण पर्यो संत हारे, कहो नानक प्रभ मिले मनोहर, मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा, हर जप सेवक पार उतारियो, दीन दयाल पए प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के, रत्न जन्म नहीं हारियो, प्रभ गुण गाए बिखे बंतरिया, कुले समूह उदारियो। चरण कमल बस्यारिद पीतर, सास ग्रास उचारियो, नानक उठ गही जगदीशर, पुने पुने बलिहारियो। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख, मोहन रहत निरार रहाओ। कथन सुनावन गीत नीके गावन, मन में तरते गार। अत सुंदर बहु चतर सियाने, विद्या रसनाचार, मान मोह मेर तेर बिबरजत, एहो मार्ग खंडे तार। कहो नानक तिन भव जल तरियले, प्रभ कृपा संत संगार। राग देव गंधारी महला पंजवा, कर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी ऊंचा, मोहन सबते ऊंचा, आना

तित ग्रह सोहलड़े कोड़ नंदा मानता नु रव रहया प्र परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री तर गोविंद भक्तो धारणो प्रभ कृपा धारी हर मुरारी पैसिंद सागर तारणो जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरद स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवा हर चरण सरोवण तै करो निवास मना कर मज्जन हर सरे सब किल विख नास मना कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिस कौ कट्टे जमके फासे मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बिनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावे संत जना प्रभ का जय करो राम मिल संत गावे खसम पावे हर प्रेम रस रंग पिनिया हर लाभ पाया आप मिटाया मिले चिरी विछुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम्या पारो बिनवंत नानक सदा निर्मलो सच शब्द रुण चुनकारो सुन वट भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी तिसरदै सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जसिया प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कले साधु हरे हर शरण पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मंतन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किश कहन ना जाई राम जिस ते उपजियाड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल महियल एक रविया न दूजा दृष्टाया बन त्रैण त्रिपावन पूर पूर्ण कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिरै प्राण आधारो राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रमिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजिय देह नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पे खे जीजिय समर्थ पूर्ण

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम, तप्त नाकत बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगै। जप जीवा हर हर चरना अमै सरोवर पियो, अमै सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संतै संग मिलै जप पूर्ण कामा राम, सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण हर निमुख मनो ना बिसरै। आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीशर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने ने पाप जुड़ते जाम्बा गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूप करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया। इक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी, बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी। बीच ना कोई करे अकिरत कान।

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाहे हो हर सबना ते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता, जग जीता सब कोए, नामे कार्य सिद्ध है सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है।

का संबंध नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध महला चौथा अंधे चानन तां थीए सतगुर मिलै रजाए बंधन तोड़े सच वसै अज्ञाना दे राजाए सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज नानक शरण करतार की करता रखै लाज पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करता तदों पुछना सेवक बिया तदों क्या को लेवै क्या को देवै जा अवरना दूजा किया फिर आपे जगतों पाया करता दान सबना को दिया आपे से बनाईयन गुरमुख आपे अमृत पिया आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सोथिया सलोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा अंदन सहज प्यार सदा आनंद गावै गुण साचे अर्द उर्द उरतार अंतर प्रीतम वसिया तुर कर्म लिखिया करतार नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार महला तीजा कहया।

मेरी माया हाँ कर कर थाका उपाप बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी जो पिर भावे सा सुहागण साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण नित सुहागण सदा

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाई है। गुर कृपा ते प्रभु त्याई है रहाओ। रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी ऊठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा। वढ़ंस महला पंजवा, विसर नाही प्रभ दीन दयाला, तेरी शरण पूर्ण कृपाला रहाओ। जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै ता लागै हावा। तेरे जी तू सधी साथी, संसार सागर ते कढ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब अवर ना होर, बिनों करै नानक कर जोर। वढ़ंस महला पंजवा, तू जानाए ता कोई जाने, तेरा दिया नाम खाने। तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ। तुझे आपे कारणू आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना। नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी। वढ़ंस

सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बहिया भला कही है सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होवा तुर कदे सब पाईया ने आप आपे नजर करे वडहंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना सब यो पाई है आप आपे सरबे समाना सरबे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझी की है राजे एक ना पिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भुलाना सदा दया करो अपनी ता नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दू गया सुख आए समाना गावन सुर नर सुगड़ सुजाना सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेतै नाही ऐला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेतै मूले जो आया ते जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा भक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी सेवक सेवै पाओ कर लागा साओ प्राणी साओ प्राणी तिन्ना लागा जिन्नी अमृत पाया नाम तेरा जोए राते नित चढ़ै सुवाया एक कर्म धर्म ना होए संजम जामना एक पछाणी भक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी हाँ बलिहारी साचे नावे राज तेरा कबो ना जावे राजू ता तेरा सदा निश्चल एहो कबो ना जावे चाकर ता तेरा सोए होवे जोए सही समावे दुश्मन ता दुख ना लगे मूले पाप नेड़ ना आवे हाँ बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे जुगै जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करै स्वामी तेरे द्वारे जपै ता साच

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बुझावै दुख भूख संसार किए सत सह चुकावै। बिनवंत नानक जाए सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा।

सारंग ज्यों पग धरै ठिम ठिम आप आप संदूरै। श्री रंग राती फिरै माती उद गंगा वाणी, बिरवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मदराड़ी बाणी। वढ़ंस महला तीजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिर कै रंग रती मुइये सोभावंती नारे, सच्चे शब्द मिल रहिए मुइये पिर रावे पाए प्यारे, सच्चे पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यो न्यो रिचाया। आप गवाया ता पिर पाया गुर कै शब्द समाया, सा तन शब्द सुहावी प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी, नानक सा तन मिल लई पिर आपे साचे साहे सवारी। निर्गुण मंत्रिये पिर देख अधूरे राम, गुरमुख जिनी रावया मुइये पिर रव रया पर पूरे राम, पिर रव रया पर पूरे वेख अजूरे जुजुए को जाता। तन बाली भोली पिर सहज रावै मिलिया करम विधाता, जिन हरा चाखिया शब्द सुपाखिया हर सर रही परपूरे, नानक कामण सा पिर भावै शब्दे रह हदूरे। सुहागणी जाए पुछ

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सौरलिया माण सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाण है कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कह पाए हर वार रावे सदा मुइये निकर वासा पाए निकर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी परली आला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब वा पार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिए लाह हर रस पी जय राम लाह हर रस लीजय हर रावी जय अंधन नाम वखाण गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप पछाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी है हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझै गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा शब्द सुवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड भागो राम गुरमती मन निज कर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हमें मारी साचे शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बुझियै हुक्मे मिल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवरण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम्या गोचर हुक्मे रहा सुमाई वढांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जमकाल जियो काल जाल जम जोहे ना सकै सचे शब्द लिवलाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुति मनमुख जोही जमकाल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरे आ अंतर तेरा निदान है बाहर वस्त ना पाल जो पावै सो पुंच तू गुरमुख नजर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सक

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजै पत गवाई हौ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवने अपना से जनवड़ पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नेह चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक काम हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजिया सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ वन जी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल बेखावनी बो वदै विकारा राम बहु वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा खोटे खरे सब परखिया नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुद गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखियन ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी जो तिसदी वड्याई राम जो तिसदी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हमें माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमती मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पी है पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजय नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरीजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करै पुकारा राम माया मोह अंतर मन लागै माया

शरण आई राम अरदास करी गुरपुरे आगे। रख ले वो देहो बढ़ाई राम रख ले वो शरण आई हर नाम बढ़ाई। तो जेवड़े अवरना दाता सेवा लागे सेवड़ भागे जुजगु एको जाता। जत सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर शरणाई। जो हर मत दे साई उपजै होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम। आपे देह बुझाई अवरना भाई गुरमुख हर रचा खिया। दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुपाखिया। घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पायन मत प्रवान सच साई। वडांस महला चौथा शंत एको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख विसार नहारा। वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा। उठत बैठत सतगुर सेवो जित सेवया सांत पाई। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई। हौ जीवा सतगुर देख सर से राम। हर नाम दृढ़ाए जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल परगासे हर नाम नवंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा हर सह समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई। सुख सतगुर देव मन परसे हौ जीवा सतगुर देख सर से। कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा राम। हौ मन तन देवा तिस्काट शरीरा राम। हौ मन तन काट तिस देई जो सतगुर बचन सुनाए। मेरा मन बैराग पाया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुखदाते देहो सतगुर चरण हम तूरा। कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई राम। हर दानो हर दान देवै हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा। सेवक पाए मिले वडभागी जिन हर जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक हरिया मिलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई। गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा हौ गुरबिन खरी निमाणी राम। जग जीवन दाता गुरमेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया। जिस कारण हौ टूंडेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृढ़ हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी। हौ गुरबिन खरी निमाणी। जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम। तिन चरण सिरेवै हम लागै तिनकै पाए राम। हर हर चरण सिरेवै तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ त्याया। तू वडदाता अंतर जामी मेरी सरदा पू हर राया। गुरसिख मेल मेरी

हम चात्रक दीन हर पास बेनंती, वड़हंस महल्ला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुदाता राम। हम पूछे सतगुर पास हर बाता राम, सतगुर पास हर बास पूछे जिन नाम पदार्थ पाया, पाए लगे नित करै बिनंती गुर सतगुर पंथ बताया। सोई भगत दुख सुख समत कर जाने, हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मिल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम साबिन से हो मैं पापा राम, जप हर नाम लथे अड़े जगता पराम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनके दुख पाप निवारे, सतगुर ज्ञान खड़ग हथ दीना जम कंकर मार बिदारे। हर हर हर प्रभ कृपा तारी सुखदाते, दुख लाथे पाप संतापा। सुन गुरमुख नाम सबिन से हम मैं पापा, जप हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम, गुरमुख जप सब रोग गवाया अरुत पय शरीरा। आंदन सह समाध हर लागी हर जपया गैर गंभीरा, जात्या जात नाम जिनत्याया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर नाम मेरे मन पाया हर।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंगाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंगाया कोड़ी ते जिन दे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वढांस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करत है हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुविन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुवामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाणे नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस महला पंजवा शंत कर चौथा।

आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम ले हां, रोवे बिरहा तन का अपना साहेब संभाले हां। साहेब संभाल है पंथ निहाल है असा पे उठे जाना, जिसका किया तिन्ही लिया हुआ तसे का पाना। जो तिन कर पाया सो आगे आया असी के हुक्म करेहा, आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम ले हां। मरण न मंदा लोका आखिए जे मर जाना ऐसा कोए, सेवो साहेब समर्थ अपना पंथ सुहेला आ गए होए। पंथ सुहेले जावो ता फल पावो आ गए मिले वडाई।

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत उपाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यारो।

ससरै चित्र जवाई, बाल कन्या कौ बा प्यारा, भाई कौ अत भाई। हुक्म पाया बाहर घर छोड़िया, आखिर मैं पई पराई। नाम दान इशनान ना मनमुख, तित तन तूड़ तुम्हाई। मन मानिया नाम सिखाई, पाए परो गुर कै बलिहार। जिन साची बूझ बुझाई रहाओ, जग स्यों झूठ प्रीत मन बेदया। जन स्यों वाद रिचाई, माया मगन अहनस मग जो है। नाम ना लेवै मरै बिख खाई, गंदन वैन रता हितकारी। शब्द सुरत ना आई, रंग ना राता रस नहीं बेदया। मनमुख पत गवाई, साध सभा मैं सहज ना चाखिया। जेबा रस नहीं राई, मन तन तन अपना कर जानिया। दर की खबर ना पाई, अखी मीट चलिया अंधियारा। घर दर दिसै ना पाई, जमदर बाधा ठौर ना पावै। अपना किया कमाई, नजर करे ता अखी वेखा। कहना कथ न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही। अमृत हृदय वसाई, निरपौ निरंकार निरवैर। पूर्ण जो समाई, नानक गुरविन परम ना भागै। सच नाम वडियाई, सोरठ महला पहला। दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंड चौबारा। सगल पवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। मेरे साहेबा तेरे चोज विडाणा, जल थल महियल पर पुरलीना। आपे सर्ब समाणा रहाओ, जह जह देखा तै जो तुम्हारी। तेरा रूप कनेहा, एक त्रूप फिरे प्रसन्ना। कोई न किसी ही जेहा, अंडज जेरज उत्पुज सेतज। तेरे कीते जनता, एक पुरब मैं तेरा देखिया। तू सबना माहे रवंता, तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। मैं मूर्ख किश दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहेबा। डुबदा पत्थर लीजै, सोरठ महला पहला। हाँ पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। अमृत चाख परम रसराते, ठाकर शरण तुम्हारी। करता तू मैं मान निमाने, मान महत नाम तन पल्ले। साचा शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम ऊरे ओछे। तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते। अहनस प्रभाते, हर रसना जाप मन रे। तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद फुन साचे। अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे। अवर ना दिसे किसा लाही, तिसे शरीक ना कोई। प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई। सोरठ महला पहला, अलाख्या पारिया गाम्या गोचर। ना तिसकाल ना करमा, जातया जाता जोनी संपो। ना तिस पाओ ना परमा, साचे सचियार विटो कुर्बान। ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचा शब्द निशान रहाओ। ना तिस मात पिता सुध बंधप, ना तिस कामना नारी। अकुल निरंजन अपर अपंप्र, सगली जो तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योत सबाई। बजर कपाट मुक्ते गुरमती, निरपै ताड़ी लाई। जंतो पाए काल सिर जनता, वसगत जुगत सबाई। सतगुर से पदार्थ पावै, छूटै शब्द कमाई। सोचे पांडै ऐसा समावै, विरला सूचे चारी। तंतै को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। सोरठ महला पहला, ज्यो मीना बिन पानी है, त्यों सागत मरै प्यास। त्यों हर बिन मरिया रे मना, जो बिरथा जावे सास। मन रे राम नाम जस ले, बिन गुर एहो रस क्यों लहो। गुर मिलै हर दे रहाओ, संत जना मिल संगति। गुरमुख तीर्थ होए, आठ सठ तीर्थ मजना। गुरदर्श प्राप्त होए,
ज्यों जोगी जत बाहरा तप नाही सत संतोख त्यों नामै बिन देहुरी जम मारै अंतर दोख सागत प्रेम न पाई है हर पाईए सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत समाए सोरठ महला पहला तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पे खारी जियो मैं क्या मांगा किश थिर ना रहाई हर दीजै नाम प्यारी जियो घट घट रव रया बनवारी जल थल महियल गुप्तो वरतै गुरसबदी देख निहारी जियो रहाओ मर्त पयाल आकाश दिखायो गुर सतगुर कृपा धारी जियो सो ब्रह्मा जोनी है पी होनी घट पीतर देख मुरारी जियो जन्म मरण को एहो जग बपड़ो इन दूजे भगत विसारी जियो सतगुर मिले ता गुरमत पाई है सागत बाजी हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ निरारे बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन प्रगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोरठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो छोडो वेस पेख चतराई दुबदा एहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै कारे अमृत कट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा को धावो कर अवगुण पछताही जियो सर अवसर की सार न जाने फिर की चबुड़ाही जियो अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नामो काही जियो निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो सच गुर बचनी फल पाही जियो ज्यो पावै त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सोरठ महला पहला पंच पदे अपना घर मुस्त राख ना साके की पर कर जोहन लागा घर दर राखे जे रस चाखे जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कवन मत लागा नाम विसार अनरस लोबाने फिर पछताहे अभागा रहाओ आवत कहो हरख जात कहो रोवै एहो दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग भोगावै गुरमुख सो अनुरागा हर रसी उपर अवर क्या कही है जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहत जिन एहो रस खोया जां साकत दुरमत लागा मन का जियो पवन पत देही देही मैं देव समागा जे तू देहे ता हर रस गाई मन तृप्तै हर लिव लागा साध संगत मैं हर रस पाई गुर मिले जम पौ भागा नानक राम नाम जप गुरमुख हर पाए मस्तक भागा सोरठ महला पहला सर्ब जिया सर लेख तो राहू बिन लेखे नहीं कोई जियो आप अलेख कुदरत कर देख हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जपो सुख होई अहनिस गुर कै बचन सरेव हरदाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवरना दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो कर अपने गुर मिले अहमत होई जियो देख दृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरे सुख होई जियो पीवो अपियो परम सुख पाई है निजकर वासा होई जियो जन्म मरण

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा। हर जियो तुदनो सदास लाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पाल खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा। हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा। हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटो वारिया सद ही तेरे नाम विटो बल जाई रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा। हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से कित आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्ध गुबारा। आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई। नानक नाम वसिया मने अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा। गुरमुख भगत करे प्रभु पावै अंदर नाम वखाणे भगता की सार करे आप राखै जो तेरे मन भाणे। तू गुणदाता

शब्द पछाता गुण कह गुणी समाने मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा निभै तेरे नाल रहाओ दुष्ट चौकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझे विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्ष नखै बिदारे प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो ले उबारे आप सकाओ बहु भला कर जाने मन मुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई राम नाम कदे चेत नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हों लागा तिन कह पाए सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटां खावे बिन सतगुर सो कदे ना पावे पाई फिर पछोतावे हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ एहो कुटुंब सब जी।

बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए। तोह कुटै मनमुख कर्म करै पाई, पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या पाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार। आया सो प्रमाण है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई पाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई। पूछो ज्ञानिया जाए, मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जियो तेरे मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै पाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, पवजल पार उतार। जग मै लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उतार। गुर सरनाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मरजन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए। सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै। हर रा साधना आया, संध्या तर्पण करै गायत्री। बिन बूझे दुख पाया, सतगुर सेवे सोवड भागी। जिसनो आप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से। विचों आप गवाए, एहो जग अंदा सब अंद कमावै। बिन गुर मग ना पाए, नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै। करै अंदर सच पाए, सोरठ महला तीजा। बिन सतगुर से

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहिष्मानी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किल बिख काटणु हारा। शब्द मराओ फिर जीवो सद ही ता फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक ना वरते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गात्मा तो तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन सरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा सबदे हम मैं खोई। सोरठ

ਆਪੇ ਲੇਖਣੇ ਆਪ ਲਿਖਾਰੀ, ਆਪੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਓ ਮਹਾ, ਅਨਦਿਨ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਲੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਲਾਹਾ ਰਹਾਓ। ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਬਨ ਆਪੇ ਗਊ ਚਰਾਹਾ, ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਵੰਸ ਵਜਾਹਾ, ਕੁਵਲੀਆ ਪੀੜਿਆ ਮਰਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਚਾਹਾ। ਆਪ ਅਖਾੜਾ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪ ਚੁਜਾਹਾ, ਕਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਚੰਡੂਰ ਕੰਸ ਕੇ ਸਮਾਰਾਹਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਬਲ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਬਲ ਭੰਨੈ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾਹਾ, ਸਭ ਆਪੇ ਜਗਤੋਂ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਵਸ ਆਪੇ ਜੁਗਤ ਹਥਾਹਾ। ਗਲ ਜੇਵੜੀ ਆਪੇ ਪਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਖਿੰਚੈ ਤਿਉ ਜਾਹਾ, ਜੋ ਗਰਬੈ ਸੋ ਪਚ ਸੀ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸਮਾਹਾ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਦੋ ਤੁਕੇ ਅਨਕ ਜਨਮ, ਵਿਛੜੇ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਸਾਧੂ ਪਰਸਤ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਜਬ ਸਤਸੰਗ ਭਏ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਹਿਰਦੈ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂਤ ਮੁਰਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤ ਵਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨਾ ਬੁਝੈ ਗਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਇਆ ਸਾਂਤ ਆਈ, ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧ ਨਿਵਾਰੀ, ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਚੀਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਤਸੰਗਤ ਪੁਰਖ ਤੁਮਾਰੀ, ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾਨਕਿਆ ਤੁਲ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਂਦਿਨ ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਬਨਵਾਰੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਤਰ ਮਨ ਬੇਦਿਆ, ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਨੀਰੈ ਬਿਨ ਸੈ, ਤਿਉ ਨਾਮੈ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਵ ਹਰਨਾਈ, ਹਾਉ ਅੰਤਰ ਨਾ ਮੰਗਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਨਾਮੈ ਹੀ ਸਾਂਤ ਪਾਈ ਰਹਾਓ, ਜਿਉ ਚਾਤਰਕ ਜਲ ਬਿਨ ਬਿਲ ਲਾਵੈ, ਬਿਨ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਲ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਹਰਿਆ ਪਾਏ ਸੁਭਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਭੂਖੇ ਦਹਿ ਜਿਸ ਡੋਲੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਰਹਿ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ, ਦਰਗੈ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਰਸ ਅੰਤਰ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਏ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਪੰਚ ਪਦਾ ਅਚਰਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਮ ਕੱਟ ਆ ਜਾਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਉ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਸੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਓ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰਮੇਲੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਵੱਥ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਵਸਤਾ ਨੂਪ ਤਗਮਾ ਗੋਚਰ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਲੱਖ ਲਖਾਏ, ਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ, ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਲੁਕਾਈ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਜਿਸਨੋ ਦਾਤ ਕਰੈ ਸੋ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੇ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਸ ਹਉ ਜਾਚੀ, ਕਿਸ ਆਰਾਦੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂਰਲ ਸੀ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਵ ਖੰਡਨ, ਸਭ ਸੁਖ ਨਵਨੇ ਦੇਸੀ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ,
मानस बपड़ा क्या सा लाही, क्या तिसका मोहताजा रहाओ। जिन हर त्याया सब के तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुखदात है, निखुट न कभी जाई, अनंद भया सुख सह सुमाने, सदगुर मेल मिलाई। मन नाम जप नाम आराध, आन दिन नाम वखाणी, उपदेश सुन साध संतन का, सब चूकी कान जमाणी। जिन कहो किरपाल होवा प्रभ मेरा, से लागे गुर की बाणी, कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जिया दयाला, सब किश कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाला। राख ले हो नानक जन तुमरा, जो पिता पूत किरपाला, सोरठ महला पंजवा, कर पहला चौतुके, गुरु गोविंद सलाहिए पाई, मन तन हिरदय तार, साचा साहिब मन वसै पाई, एहा करनी सार। जित तन नाम न उपजै पाई, से तन होए शार, साध संगत को वारिया पाई, जिन एक अंकार आधार। सोई साचा राधना पाई, जिसते सब किश होए, गुरपूरै जान आया पाई, तिस बिने अवर ना कोए रहाओ। नाम विहुणे पच मोए पाई, गणत ना जाए गणी, विण सच सोच ना पाईए पाई, साचा अगम तनी। आवण जान न चुकई पाई, झूठी दुनी मणी, गुरमुख कोट उधार दा पाई, दे नाम एक कणी, सिमरत शास्त्र सोधिया पाई, विण सतगुर भरम ना जाए, अनक कर्म कर थाकिया पाई, फिर बंधन पाए, चारे कुंडा सोधिया पाई, विण सतगुर नाही जाए, वड भागी गुर पाया पाई, हर हर नाम ते आए, सच सदा है निर्मला पाई, निर्मल साचे सोए, नदर करे जिसे अपनी पाई, तिस प्राप्त होए, कोट मदे जन पाईए पाई, विरला कोई कोए, नानक रता सच नाम पाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवां, दो तुके जाओ लाओ पाओ अपाओ, एहो मान तौ लाओ मिलन दूराई, आने अपना करत बिचारा, तौ लो बीच बिखाई, माधवे ऐसी देह बुझाई, सेवो साध गहो ओठ चरना, न बिसरै मुहत छसाई रहाओ। अरे मन मुगद्या चेत चंचल चेत, तुम ऐसी हृदय ना आई, प्राण पत त्याग अंतू रचिया, उर्ज्यो संग बैराई, सोग ना व्यापै आप ना थापै, साध संगत बुद्ध पाई, सागत का बकना इउ जानो, जैसे पवन चुलाई, कोट परादा शादे ओहे मनो, कहना कछु ना जाई, जन नानक दीन सरण आयो प्रभु, सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलतर लोक ग्रह बनता, माया संबंधे ही अंत की बार को खरा ना होसी, सब मिथ्या असनेही, रे नर काहे पपोरो देही, उड़ जाए गो तुम बादरो, एक भाजो राम स्नेही रहाओ, तीन संगिया कर देही कीनी, जल कूकर पस मेही, होए आमरो ग्रे मैं बैठा, करण कारण बिसरोही। अनक पांत कर मणिये साजे, काचै ताग परोही, टूट जाए गो सूत पापरे, फिर पाछै पछतोही। जिन तुम सिरजे सिरज सवारे, तिस ध्यावो दिन रहने ही, जन नानक प्रभ कृपा धारी, मैं सतगुर ओट गहे ही। सोरठ महला पंजवा, गुर पूरा पेटियो वड भागी, मने भया परगासा, कोय ना पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुर कै बलिहार, आगे सुख पाछे सुख सहजा, कर आनंद हमारे रहाओ। अंतर जामी करण हारा, सोई खसम हमारा, निरपो पै गुर चरणी लागे, एक राम नाम आधारा।
सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी होवनहारा, कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे, नानक कौ गुरपुरा भेट्यो सगले दुख बिनासे, सोरठ महला पंजवां सुखिए कौ पेख सब सुखिया, रोगी कै भाण सब रोगी, करण करावन हार स्वामी अपन हाथ संजोगी, मन मेरे जिने अपना भरम गवाता, तिसकै भाण कोई न भूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता रहाओ, संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी, हाँ मैं रोग जाका मन ब्याह भरम गवाता, तिसकै भाण कोई न भूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता रहाओ, संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी, हाँ मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्ब परगासा, अज्ञान अंधेरै सूझस नाही, बहुड़ बहुड़ परमाता सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक एहो सुख मांगै जह कीर्तन तेरा साधु गावै, तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवा, तन संतन का, तन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ते आया, सर्ब कुशल तब थिया, संतन बिनु अवर ना दाता बिया, जो जो शरण पर साधु की, सो पार गरामी किया रहाओ, कोट प्राद मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई है, इहां सुखिया गै मुख उजल, जन का संग वड भागी पाई है, रसना एक अनेक गुण पूर्ण, जन की केतक उपमा कही है, अगमा गोचर सदैव नासी, शरण संतन की लही है, निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़त मोह गृह अंध कूप मैं, नानक लिहो निबाही, सोरठ महला पंजवां कर पहला, जा कै हृदय वसिया तू करते, ता की तै आस पुजाई, दास अपने कौ तू विसरै नाही, चरण तूर मन पाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निधान सुखदा ते स्वामी सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक कौ तुम सेवा दीनी, दर्शन देखिया गाई, सर्ब निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुदिया बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पए सब ठाई,

ओड़क को ना पहुँचे मेरे मन साध सरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रही फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओह जो परम पुलावा कहियत तिन मैं उर्जो सगल संसार।

हर जन को ही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निकोठा कर दे सारा हो तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर।

कीते कहो मेरे सम्मान करनहार तरन जाने, तू दाता मांगन कहो सगली दान देह प्रभ पान। खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूढ़ो गूढ़ो गहर गंभीर, ऊंचो अगम्य अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, आनंद भया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवां, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओढ़ सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बने आई, पूर्व लिखिया पाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों ब्योहारा, संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करै गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवां, जेती समग्री।

गुरपुरै दिया उपदेसा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृतक का उपायो तन सासा। बिशरत यान मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ताकि कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाँथ

तावत तावत नह त्रपतासिया, राम नाम नहीं चीना। साध बेकार बिखै रस मातो, असंख खते कर फेरे। नानक की प्रपाहे बिनंती, काटो अवगुण मेरे। सोर

माया मोह मगन अंधियारै देवन हार ना जानै जियो पिंड साज जन रचिया बल अपनो करमानै मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी जो किछ करै सोई सोई जानै रह न कछु ऐशानी रहाओ जिहबा स्वाद लोभ मद माता उपजे अनक बेकारा बहुत जोन भरमत दुख पाया हम मैं बंधन के पारा दे के वा

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश बिनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अबनासी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई किन्नी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरा।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभ त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा, जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपुरा है राखी शरण सचे की ताकी, परमेश्वर आप हो रखवाला, सांत सहज सुखन मैं उपजे, मन होवा

मिल साधु दुर्मत होए पद तपुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभु अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरके पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकरो सगरो दुख मिटायो कहो नानक हो मैं पीत गुर खोई तो दयार बीठ लो पायो सब रहो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्व गुणा निदरायो रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम पर्यो भगत गोविंद का।

जैसा बाल को पाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हरे अंतर जामी सब जाने ता किस पै आग सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयालो किरपाल प्रभ ठाकुरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी कीमत कहन न जाई पेख पेख जीवै प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई तार अनुग्रहो आप प्रभ स्वामी पत मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संता तूरी सोरठ महला पंजवां गुरपुरा नमस्कारे प्रभ सबे काज सवारे हरे अपनी कृपा तारी प्रपूर्ण पै सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल मनोरथ कीने करते ऊनी बात ना काई रहाओ करते पुरख ताल देवाया पिछे लग चली माया तोट ना कतहूं आवै मेरे पूरे सदगुर पावै सिमर सिमर दयाला सब जी भय कृपाला जय जयकार गोसाई जिन पूरी बणत बनाई तू पारो स्वामी मोरा एहो पुन पदार्थ तेरा जन नानक

प्रभ अपने वर दीने सगल जीव असकीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संतां देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवां सोई कराए जोत पावे मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारग तो शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ। जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया। प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ। परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कार्ज सब सवारिया मंदा को नाया लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहुड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवा, ऐथे उथे रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुपाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सास सास संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवां, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावे, बिरथी आस न जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पा दाता, सोई संत गुण गावे, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावे, आठ पहरो हर का जस रमणा, बिखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरे करते, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपे आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवां, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिके बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्स अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरा आरा दे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज न आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज को क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवां, सुख सांद कर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवां, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय उर तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवां,
ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ, ਜਿਸਨੋਂ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰਾ, ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇਰੈ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਾਰ ਵਿਡਾਰੇ ਸਗਲੇ, ਦਾਸ ਕਉ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਸਗਲੇ ਥਾਨ ਵਸਾਏ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਫਿਰ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨ ਆਏ, ਜਨ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੁਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਆਰਾਧੋ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਓ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਭਾਈ, ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵਲਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੱਖੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਸ ਚਾਖੈ।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तसै अंदेसा नाही, सतगुर चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही, सुख सहज आनंद घनेरे, सतगुर दिया दिलासा, जिन घर आए सोभा सेती, पूर्ण होई आसा, पूरा गुर पूरी मत जांकी, पूर्ण प्रभ के कामा, गुर चरनी लाग तरयो पव सागर, जप नानक हर हर नामा, सोरठ महला पंजवा, पयो किरपाल दीन दुख पंजन, आपे सब ठाती, खिन मैं राख लियो जन अपना, गुरपूरै बेड़ी काटी, मेरे मन गुरु गोविंद सद त्याई है, सगल कलेस मिटे इस अंते, मन चिंदिया फल पाई है रहाओ, जेते जी जंत जाके सब कीने, प्रभु उच्चा अगम अपारा, साध संग नानक नाम ते आया, मुख उज्जल पय दरबारा, सोरठ महला पंजवा, सिमरो अपना साई, दिन सरैन सत्याई, हाथ दे जन राखे, हर नाम महाराज चाखे, अपने गुरु उपर कुर्बान, भय किरपाल पूर्ण प्रभदाते, जी होए मेहरबान रहाओ, नानक जन सरनाई, जिन पूर्ण पैज रखाई, सगले दुख मिटाई, सुख पुंचाओ मेरे पाई, सोरठ महला पंजवा, सुनो बिनंती ठाकुर मेरे, जी जंत तेरे तारे, राख पैज

सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सुवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पहारे उतारे संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपा निद पूर्ण खसम हमारे रहाओ आओ बैठ आदर सब थाई ऊन न कतहू बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एको अंकार सतगुर प्रसाद हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जाते अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहनो तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारे ओ अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उतारो रहाओ अटल भयो त्रु जा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरै पारा।

तरई कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई कल मैं एक नाम कृपा निध जहें जपै गत पावै और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिख्यन कौ तावत केह बिदरो कौ ताहे रहाओ वेद पुराण सिमरत के मत सुनो निमख नाहिए बसावै पर धन पर धारा सिउ रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै पयो बावरो सूजित न कछ ज्ञाना कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी सोरठ महला नावा हरे नर एह साची जी तार सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अज हूं समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगते अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे जब ही निरतन देखियो नरकओ संग छाड़ सब भागे

लोभ मोह अवमाना हरख सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जगते रह निरासा काम क्रोध जे परस नाहनो ते कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर कौ कीनी तेह ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यो पानी संग पानी सोरठ महला नावा प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ को काहू को नाही रहाओ सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत चहूं दिस फेरै बिपत परी सभी संग छाड़त।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर सिओ बैरागिए पाई, दर कर साच अपूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े ते है। गुर बिन अलख न लखिए पाई, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो, हर नाक समार पजाया। गुरमुखां नू प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नू जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नू प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विदा।

मुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधकाई। वेद पढ़े तै वाद वखाणे बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर सच है सचियारा। उन्हां दी सोभा जुग जुग होई कोई न मिटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार जिन हर राखिया उर तारा। सोरठ महला तीजा दो तुकी निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई। सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई। राम नाम चित लाए हर जियो वापे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लय रलाए। रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे। सच है शब्द विचार पहु जल पार उतारियन पाई। सतगुर बेड़े चाड़ मनूरै ते कंचन पए पाई। गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाव मन वसिया पाई। ज्योति ज्योत मिलाए हौ वारी हौ वारण पाई। सतगुर को सदबलिहार है जाओ। नाम निदान जिन दिता पाई गुरमत सहज समाओ। गुरबिन सहज ना उपजै पाई पूछो ज्ञानियां जाए। सतगुर की सेवा सदा कर पाई विचों आप गवाए। गुरमति पौ उपजै पाई पौ करनी सचसार। प्रेम पदार्थ पाईए पाई सच नाम आधार। जो सतगुर सेवा अपना पाई तिनके हों लागों पाए। जन्म सवारी अपनी पाई कुलपी लई बखसाए। सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए। नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए। सोरठ महला तीजा

मिठा करके खाया प्यारे, तिन तन कीता रोग, कौड़ा होए प्रतिष्ठिया प्यारे, तिस ते उपजिया सोग।

माया लाल च अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना कीजई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वस न जातिया प्यारे कून न चली नाल सतगुर जिना मिलाय उन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंधन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सेई सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी हैवर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिली है ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मै हर स्यो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक हे रंग माता भयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेय पै वसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ

हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया, दाता करता आप आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरत ओ पावन हारिया, हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा, हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पए, नानक सच कमाए महला तीजा, सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान, कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए, जे गुर कै शब्द सुमाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम सुमाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है, हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइय, श्लोक महला तीजा, पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेतो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोहकाला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखा नो सुख अगला जिनांतर नाम निवास। महला तीजा, से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए, जे अभिमान करे बेकार मनमुख आप सुवारथी कारज ना सके सुवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार। पौड़ी तुद आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप से

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सच्चा शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चा नाए प्यार, नानक नाम रते सहज रजे जिन्ना हर रखिया अवतार। महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेवया दुख लगा बहुता आए, अंतरा ज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन अठ सहज ना बीजियो भुखा के अगै खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी, जो मंत्र मुख हर बोले साहर पावनी। जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी। जिस होवे आप दयाल सा सतगुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा। हस्ती सिर ज्यो अंकस है अहरण ज्यो सिर दे, मन तन आगै रख कै उबी सेव करे। इउं गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करे। महला तीजा। जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते प्रवान, नानक कोले उधार अपना दरगह पावै मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु में लाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कर लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना भाव गुरु देवाइया, गुरसिखा एको प्यार गुरमिता पुता पाइया। गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जी वाइया। श्लोक महला तीजा। नानक नाम ना चेतनी अज्ञानी अंदले, अवरे कर्म कमाए जमदर बदे मारी है फिर विष्टा माहे पचाहे। महला तीजा। नानक सतगुर सेवै अपना सेजन सच्चे परवान, हर कै नाए समाय रहे चुका आवन जान। पौड़ी तन संपै माया संचिय अंते दुखदाई, कर मंदर महल सवारी है के साथ ना जाई। हर रंगी तुरे नित पाली है किते काम ना आई, जन लाभो चित हर नाम से ओवंत होए सिखाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा। बिन करमै नाव ना पाई है पूरे कर्म पाया जाए, नानक नजर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मिलाए। महला पहला। एक दज्जै एक दबी है एक ना कुत्ते खाहे, एक पानी विच ओ सटी है एक पी फिर हसन पाहे। नानकेव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैदा माया सब पिवित है, जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते, तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साधु संत चढ़ जाते, तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोले हर हर राम नाम हर साते, जिनके पोते पुन है से गुरमुख सिख गुरु पह जाते। श्लोक महला तीजा। नानक नाम कुथिया हलत पलत सब जाए, जप तप संजम सब हिर लया मुठी दूजे पाए। जमदर बदे मारी है बहुती मिले सजाए। महला तीजा। संता नाल वैर कमावंदे दुष्टा नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं मर जमै वारो वार।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁੱਝਈ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੋਣਿਆ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਪੌੜੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਬਿੰਦੂ ਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਸਹੀ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਮ ਦੇ ਜਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਹੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਵੰਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਹੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਰ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਏ ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਪਾਰਸ ਹੋਵੈ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਨਾਨਕ ਗਣਤੈ ਸੇਵਕ ਨਾ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਪਵੈ ਥਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਹਿਲ ਕੁਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਸੋ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਲਹਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਉ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਸਭਾ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਪੂਰੀ ਪਈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ ਪੌੜੀ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤਿਆ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆ ਧਨ ਧਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरयो ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जमके पटाए लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तन दीना, राग राग नी डिंब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परे ओ काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेत चेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहाही, मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, औरन पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए, एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कभी

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुदारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पमने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की हो संग लूना, अद शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो

नाही कीता लबो एक नाम तेरा मैं फबो कह कबीर मन मानिया मन मानिया तो हर जानिया। राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब देखा तब गावा तो जन तीरज पावा नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ। जह

बेडी दे न जाई, देख बेडी रे उस माई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ। बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जौ को शान शवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो। ऐसो बेडी वर्ण ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो। गुंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो। बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांध तू था प्यो हो। नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो। सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजे, बिन सावन कन हर गाजे।

हम बाती जाओ तुम तीर्थ तौ हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोरी अवर संग तोरी जह जह जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकरे और ना देवा तुमरे भजन कटै जा फासा भगत हेत गावे रविदासा जल की पीत पवन का थंबा रगत बूंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ राखो कंध उसारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा बंके बाल पाग सिर डेरी एहो तन होएगो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठावे पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो नहीं रामबी ठाओ रोपो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुंचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

हर हर अगमे अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन कौ कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख भरम पौ भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमते अंतर जागी। हर कह नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नानक कीरे तुम वट पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सकै प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दास संदास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुर बानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब के लिविख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उचे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानाओ। हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवो बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो वाज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पय हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिनो रह ना सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिनो हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगाह हम लह ना सके अंत माती। तू पर परे अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उतम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरह तरा की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते का की रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर
लग संगत साध जना की, दिन यार सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चरियो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर, तुम आपे आप आपा की। जन नानक कहो प्रभ कृपा की, जय कर दस दास दसा की। तनासरी महला चौथा, कर पंजवा दोपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। उर धार विचार मुरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने। अदृष्ट गोचर परंपर स्वामी, गुरपुरे प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सतसंग पे। हर कंचन चंदन कीने रहाओ, नाम शे खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ इवना पतीने। जन नानक हरे हृदय सत्याव, इं हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा, सतगुर एव हर हर नाम ते आई। हर दर गै पावै, फिर जन्म ना आवै, हर हर हर ज्योत समाई। जप मन नाम हरी, होहे सर्व सुखी। हर जस ऊच सबना ते ऊपर, हर हर हर सेव छडाई रहाओ। हर कृपा निध कीनी, गुर भगत हर दीनी। तब हर स्यो प्रीत बने आई, बहु चिंत विसारी, हर नाम ओर तारी। नानक हर पय है सखाई, तनासरी महला चौथा। हर पढ़ हर लेख, हर जप हर गाओ, हर भोजन पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए, हर होए संतुष्ट। एव पण हर नाम मोरारी, मन जपिए हर जगदीश। मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होवे दिन राती। हर कीर्त कर बनवारी रहाओ, हर हर करी दृष्ट। तब भयो मन उद्यम, हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासरी महला चौथा, चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो, सब चाहे हर जियो तेरो नाओ। गुर प्रसाद को विरला पावै, जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ। जप मन राम नाम, हर जसियु तुम काम। जो गावै सुने तेरा जस स्वामी, हम तिनके सद बलिहारे जाओ रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हों पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजै, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवै। सब गावै हर हरि उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावै। जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी। बोलो पाई हर कीर्त, हर पवजल तीर्थ। हर दर तिन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जनो जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जा कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े। ता सर्व सुख पाव है मेरे मना, जप मानो सतनाम सदा सतनाम। हालत पलत मुखी उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया, तह उपाद गत कीनी, वडपागी हर जपना। जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना। तनासरी महला चौथा।

तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहै दरबारे सर्व जियां के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महिया लो रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करै सगल जन तेरी तू अवनासी पुरख मुरारे ज्यो भावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवां बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बड़ायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरनी लाए साध संग चिंत

कहो नानको जिन जमते काढे तिस गुर कै कुरबाणी। तनासरी महला पंजवां जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ विद नेकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिन की बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगटियो जो तो सहज सुख सोबा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मैं किन्ही तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रपै बिन हर कहां अगाई। रहा हो दिन दिन कर

कामवंत कामी बहु नारी परग्रे जोहन चूके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एह तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बने आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन न साको उस ता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आय चिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरे कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजै सब तां कहो, बिख मन ना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन एह बिदन है पतियानो ठाकर, जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहार जास, तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रपेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै प्रभु मिलावै, हर हर नाम सुनावै अस्त्र करे निचल एहु मनुआ, बहुण ना कतहूं तावै। है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा, इन स्यों प्रीत न लागै, संतै संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागै। गुण निदान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला, मांगै दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गोपाला। तनासरी महल

जा कै संग तेरे बंधन छूट गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवरे आस कश पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जा को कृपा कीजै।

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ। चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके। एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन था प्यो हर जपना निमख जाप्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे कर्म पल्ला तिन ओट गही संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेस लोभ मोह महापौजर तारे रहाओ। सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे। तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै।

तस्कर नहीं लेवे, पाहे ना सके जले रहाओ। निर्तन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। तनाश्री महला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नाम ने दरिद सिधार, लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का, रव रया सर्व ठाई रहाओ। ता को कोई न पहुंच नहारा, जा कै अंग गुसाई, जम की त्रास मिटै जिस मृत, नानक नाम ते आई। तनाश्री महला पंजवा, दर्भवंत दर्व देह गर्भ है, पूम मंत अभिमानी, राजा जन सगल राज हमरा, त्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है, जैसा बित तैसा हुए वर्त, अपना बल नहीं हार रहाओ। आन त्याग पय के आसर, शरण शरण कर आए, संतान अनुग्रह।

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस तां कै जां का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम त्यावन सहिस मावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करे मान खुड है कावे ओह अंतर जामी जाने पाप करे कर मुकर पावे पेख करे निर्बन जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेख आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग टुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा नाम गुर दी होए अपने जा कै मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मै तरमा। जन कौ नाम वडाई सोभ नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै सेई पूरा सहा नाम व्यवहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्स पेखे माथे परोर वाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो रखन हार दयाल सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन ने ऊपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनाश्री महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखै महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिलै नानक संत सेवा। तनाश्री महला।

मंत्र राम नाम हितकारे सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कथू जात सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पही हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवां पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवां सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती। रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

संतन का संग पावा, सोग अगन में माना व्याप, आठ पहर गुण गावा, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मदयंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बाहुड़ जन्म ना छापण। तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मानख कहो जाचत शरम पाई है, प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुनजन सिमरत पुराना, वेद पुकारै कोख, कृपा सिंध सेव सच पाई है, दोवै सोहेले लोक। आन आचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पह काटे, मिल साधु बिन से शोक। तनासरी महला पंजवा, तृष्णा बुझ

आओ वड़े पाग पेटे गुरदेवा कोट प्राद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपव नाम जपो हर रंगे पार तन दोख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े त्रिसना यगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए अंधन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जन खन मैं तारा

जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अदक डराओ मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए यह जी सोच तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो पस ज्यो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हौ पतत तरो तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदियां एको ओंकार सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी पर पूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर रस चुग चुगै प्रभावै सरवर में हंस प्राण पत पावै क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल ना जाए रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे सरवर हंसा छोड़ ना जाए प्रेम भगत कर सह समाए सरवर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडलिक जोगी बैसे नारना पुरख कहो को कैसे तिर पवन जोत रहे लिव लाई सुर नरनाथ सच्चे सरनाई आनंद मूला नाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वछल पै काटन हारे हमें मार मिले पगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल में आए जन्म

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवण जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइय रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिलै मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै। घड़ पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया। पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पयावै जाहे। नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा। मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए।